जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दो आंखें 12 हाथ, इस फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ आपने भक्ति भाव से जुड़ा गीत सुना। और अब अगला गीत ये कहता है कि जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, अंतर मन उसे पुकार उठता है और फिर उसको आना ही पड़ता है।

बहुत बार हम भी जब दुनिया के कर्म करते हुए मन को दुखी देखते हैं तो उसे ही पुकारते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी विनती सुनने वाला उसके अलावा कोई भी नहीं।

यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि तदनुसार 25 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:56 और 20 सेकेंड्स हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। लीजिए सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया।

0: किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ इस मातृ वंदना

सुमन कल्याणपुर की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, आपको बता दें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनूप जलोटा की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये भजन।

अनूप जलोटा की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लता जी की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये राम भजन, लीजिए सुनिए।

लता जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, लोक भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनूप जलोटा की आवाज में आपको ये भजन सुनवा रहे हैं और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अनूप जलोटा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। और श्रोताओं, इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है मौन। चिंतक हैं स्वामी आत्मानंद, लीजिए सुनिए।
1: एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति भी अपनी चर्या में नियमित अवकाश का स्थान रखता है। मौन जीवन का एक अत्यंत आवश्यक उपादान प्रतीत होता है। जब हम किसी निर्जन स्थली अथवा झील के किनारे या उपवन में घूमते होते हैं, पर्वत के शिखर पर पहुंचकर प्रकृति के रूप माधुरी का पान करते होते हैं, तो हम वास्तव में अनजाने मौन की खोज में होते हैं और उसका उपभोग करते हैं। पर हमें हर समय मौन की इस महत्ता का भान नहीं होता। जीवन में मन बहसे अवसर भले ही बहुत कम प्राप्त होते हैं, पर जब कभी भी मिलते हैं तो हम उस प्रभाव को नहीं भूल सकते जो प्रकृति के साथ तादात्म्य हमारे चरित्र पर डालता है। फिर कभी जब हम मध्य रात्रि में उठ जाते हैं, जिस समय चारों ओर एक गहरी निस्तब्धता है, उस समय हमें एक अभिनव अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि रात्रि का गहरा मौन भाव मानो हमारे अंतर में घुसा जा रहा है। हाँ, संभव है मौन कभी भयावह भी हो जाए, तो इन अपवादों को यदि हम छोड़ दें तो हम में से अधिकांश लोग बीच बीच में प्रकृति के स्पर्श से अथवा घर में ही प्राप्त होने वाले मौन का स्वागत करते हैं, तो हमें एक प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त होती है और हमारे स्नायुओं को ताजगी मिलती है, हमारी खोई हुई शक्ति लौट आती है। कुल मिलाकर प्रभाव यह होता है कि हमारा तन और मन दोनों प्रफुल्ल हो जाते हैं। फिर सुषुप्ति भी जीवन में मौन की आवश्यकता को सिद्ध करती है। हम दिन भर कितने ही व्यस्त क्यों न हों, रात्रि में उस घड़ी की चाह रखते हैं जब हमारे विचार और भावनाएं, इच्छाएं और आशाएं, चिंताएं और जिम्मेदारियां सब कुछ पीछे छूट जाता है। वह गहरी नींद है क्या? क्या वह मौन का ही अवसर नहीं है? यद्यपि हम उस अवस्था में सब पीछे छोड़ जाते हैं, यहां तक कि शरीर का बोध भी, तथापि उससे हम आनंद प्राप्त करते हैं। वास्तव में निद्रा कोई शून्यता नहीं है। निद्रा के रहस्य को जानने के लिए न तो हमारे पास समय होता है और न रुचि ही। हम उस अवस्था में आराम और शांति पाते हैं, बस यही हमारे लिए पर्याप्त होता है। किंतु उपनिषद इस अवस्था के संबंध में बड़ा प्रकाश डालते हैं। उपनिषदों के अनुसार सुषुप्ति मानव चेतना को विश्व चेतना की भूमि के सन्निकट ले आती है। यह विश्व चेतना असीम शांति की अवस्था है। यही कारण है कि हम नींद से जागने पर इतना तरोताजा अनुभव करते हैं। मौन का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी मौन के महत्व को स्वीकार करते थे। संत विनोबा भावे ने तो मौन को अपने जीवन का एक अंग ही बना लिया था। मौन की महत्ता के आधार पर ही इसकी परिभाषा मुनि के आचरण से दी गई है। यदि हम

0: मौन के आध्यात्मिक महत्व की बात को छोड़ भी दें, तो भी हमारे भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन परमावश्यक है। मौन का प्रारंभिक अभ्यास यह है कि हम कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाएं और मन में किसी गंभीर विचार या क्रियाशीलता को न बैठने दें। इस प्रकार भले ही वह 10 मिनट के लिए क्यों न हो, यदि हम अपने आप में स्थित रहें तो वह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी टॉनिक का काम करता है। इस अभ्यास से हमारी चिंताएं और मन की चंचलता भी कम होती है। मौन की आश्चर्यजनक शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव की जा सकती है। उस समय सब कुछ निस्तब्ध रहता है। रात्रि के गांभीर्य को यदि हम अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयत्न करें तो इससे आश्चर्यजनक रूप से मन का तनाव दूर हो जाता है।
1: मौन विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। चिंतक थे स्वामी आत्मानंद। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस पाठ। स्वर दे रहे हैं महेंद्र कपूर।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्पबुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ठिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ, स्वर दे रहे थे महेंद्र कपूर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओ, कृषि समय के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। इस विषय पर डॉक्टर देव नारायण से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: आजकल किसान भाई भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सघन खेती करते हैं, जिसमें कि एक साल में 2 से 3 फसलें लेते हैं, परंतु भूमि का उचित प्रबंधन ना होने के कारण धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति का अर्थ है भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता, जिससे कि पौधों की वृद्धि अच्छी हो पाए और अधिक उत्पादन मिले। अगर भूमि उर्वर होगी तो उसमें फसल की बढ़वार अच्छी होगी, जिसके फलस्वरूप खेत से अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकेगी। भूमि पौधों के भोजन का भंडार है, परंतु जब हम बार बार फसल लेते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगती है और उसके फलस्वरूप उत्पादन भी घटने लगता है। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि किसान को जो मृदा परीक्षण है उसको करवाना चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि खेत में जो उपजाऊपन है वो कितना है। तो इससे है कि उसमें जब हम मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो मिट्टी में जीवांश की मात्रा कितनी है, मिट्टी का पीएच मान कितना है और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो कितनी है, इस बात का पता चल सकेगा मृदा परीक्षण से। तो हर किसान को अपने खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण कराना चाहिए। और इसके बाद जो है खेत में ली जाने वाली फसलों की आवश्यकता तथा खेत में विद्यमान पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भूमि में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, फसलों की बढ़वार और विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें जिनके नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो पोषक तत्व हैं इनको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती, ये पोषक तत्व पौधों को वायु से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व हैं और ये अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए। इसके बाद आते हैं गौण पोषक तत्व, जिनके नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। इसके पश्चात फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें लोहा, तांबा, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकिल। और जो दलहनी फसलें हैं उनको कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है, परंतु जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी बहुत कम मात्रा पौधों को चाहिए, परंतु चाहिए जरूर। परंतु हमारे किसान भाई हैं क्या करते हैं कि मुख्यतः यूरिया और DAP का प्रयोग करते हैं। यूरिया से केवल नाइट्रोजन मिलती है और DAP से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्व प्राप्त होते हैं, परंतु पौधों को चाहिए कि पूरे 17 पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में उपलब्ध हों। धीरे धीरे किसान भाई केवल रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगी है। अतः किसान भाइयों को सड़ी हुई गोबर की खाद, नाडेव कंपोस्ट, बायोगैस की सलरी, केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये खादें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ भूमि की जल धारण क्षमता है उसको भी बढ़ाती हैं, जिससे अपवाह व मृदा क्षरण में कमी आती है। भूमि में जैव पदार्थों की उपलब्धता बढ़ने से उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। अतः किसान भाइयों को रासायनिक खादों के साथ साथ जो जैविक खादें हैं उनका प्रयोग

0: नितांत आवश्यक है। अन्य फसलों के साथ साथ वर्ष भर में कम से कम एक दलहनी फसल को अवश्य उगाना चाहिए। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संग्रहित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संग्रहित करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फसलों की जो बुआई है वो ढाल के आड़े करें, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो। इसके अलावा किसान भाइयों को खेत की अपनी गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आए और उसमें उपलब्ध पोषक तत्व पौधों को प्राप्त हो सकें। तो अतः भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, उसके अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए एवं हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए।
1: कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर देव नारायण से जानकारी, और इसके साथ ही कृषि सामयिकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। फिल्म संगीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हम आपको सुनवाएंगे विनोद पुरोहित और अनीसा बेगम के गाए लोकगीत। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा आज सुबह 10:05 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको बीनाज मसानी की गाई कुछ गजलें सुनवाएंगे, और आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इन दो विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक खेती अपनाएं पर्यावरण बचाएं, इन दो विषयों पर बातचीत के अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता। विषय होगा धान की उन्नत प्रजातियां और नर्सरी प्रबंधन। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, धान की उन्नत प्रजातियां और नर्सरी प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार कुशवाहा से श्री SS चौधरी की बातचीत। श्रोताओं, ये रूपरेखा हुई हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी लीजिए उन कार्यक्रमों की जिनका हम अनुप्रसारण करेंगे। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। हिंदी में समाचार सुनिएगा सुबह 7 बजे। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज सुबह 7:10 पर। आज सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, और सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। जिले की चिट्ठी सुनिएगा आज सुबह 10 बजे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनिएगा आज दिन में 11 बजे से लेकर दिन में 12:25 तक, उसके बाद दिन में 12:30 से दिन में 3 बजे तक। इसमें हम मुख्य कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज दिन में 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, दिन में 1:30 पर लोक संगीत, और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 2 बजे। प्रादेशिक समाचार दिन में 2:10 पर। दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 2:30 से दिन में 3 बजे तक, और शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, आपको बता दें कि महिला कार्यक्रम, लोक संगीत, सुगम संगीत और कार्यक्रम युववाणी, यह आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, आज शाम 6 बजे से लेकर शाम 7:05 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण, और शाम 7:10 और 30 सेकेंड पर आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। विविध भारती के कार्यक्रम का प्रसारण सुनिए।

ये रात 8 बजे से लेकर रात 8:42 तक, रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। श्रोताओं, हमारे देश की जो भाषा और संस्कृति है उसे हम राष्ट्रीय एकता का आधार स्तंभ मान सकते हैं, क्योंकि इसके अभाव में, यानी कि भाषा और संस्कृति के अभाव में, जो राष्ट्रीय एकता की जो हम बात करते हैं वो इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, यही हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और एकता को मजबूत करने में बहुत बड़ी सहायता और मदद करता है। जैसे मैं आपको एक हिंदी में राष्ट्रीय कविताओं की एक लंबी परंपरा रही है, परंतु एक गान ऐसा है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस गान ने पूरे भारत में उत्साह की बिजली दौड़ा दी थी। पार्षद कृत झंडा गान, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। याद आया आपको? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रोताओं, इस तरह की गीत, गान, कविताएं, लेखन बहुत कुछ हुआ जिन्होंने प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक जनमानस के मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव डाला, उस प्रभाव के द्वारा, उस प्रभाव से जब मन और दिल में देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति एकता का जो भाव हमारे अंदर प्रतिबिंबित हुआ, उससे राष्ट्रीय एकता के जो मजबूती होती है, राष्ट्रीय एकता की राह में जो मजबूती और जो दृढ़ता होती है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। और राष्ट्रीय एकता की इसी लहर को यद्यपि बहुत कवियों ने गति दी, लेकिन जिस समग्रता से जो मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त ने उसे प्रवाहित किया, वैसा कोई दूसरा आधुनिक कवि नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने कावा करवला रचना में उन्होंने मुस्लिम भाइयों के मनोभावों को तो चित्रित किया ही, साथ ही मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन के जीवन पर प्रकाश डालकर पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का अत्यंत ही दृढ़ प्रयास किया। उन्होंने उसमें लिखा है, कावा करवला रचना में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा, उन्होंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये सारा संसार है उस प्रभु का परिवार, ये सारा संसार है उस प्रभु का परिवार, सबसे रखना चाहिए प्रेम पूर्ण व्यवहार, यही ईश्वरो उपासना और यही धर्म का मर्म, और एक दूसरे के लिए करे यहां सत्कर्म। जिस प्रकार कविता मानव मन का स्पर्श करके भावात्मक एकता में सहायक बनती है, उसी प्रकार संगीत और कथाएं भी हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष के संगीतज्ञ, वो चाहे उत्तर के निवासी हो, दक्षिण के हो, पूर्व के हो, पश्चिम के हो, परंतु जब वे गाना शुरू करते हैं तो वहां पर वे सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के, स्वामी हरिदास आदि संतों के लिखे भक्ति पद गाते हैं। हमारे उपन्यासकारों को देखिए, कहानीकारों को देखिए। अब आप प्रेमचंद के गोदान को देखिए। जब आप आम आदमी की बात करते हैं तो हमारे साहित्य भरा पड़ा है। मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से जानते हैं, उन्होंने इतना कुछ लिखा है जो हमें अपने अंदर से राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत और दृढ़ बनाती है। श्रोताओं, यही सब बातें होती हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, एक दूसरे से स्नेह बनाए रखती हैं। और ये जो भाषा का भाव होता है ना, जब हम एक दूसरे से अपनी ही भाषा में बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत का असर होता है कि हम एक दूसरे के प्रति एकता के सूत्र में बंधने के लिए दृढ़ रूप से प्रयासरत रहते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
1: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डरा है धमका है तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
0: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र

0: सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसके लेकर झाबुआ और डिंडौरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 2,52,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 2,33,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, पृथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय ITI राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसिलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:20:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत से। गीत समीर का है, फिल्म का नाम है सौगंध।

सौगंध फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। घरौंदा फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं रूना लैला की आवाज में। गीत नक्श लॉयलपुरी का है और संगीत जयदेव साहब का।

0: जयदेव साहब के संगीत निर्देशन में रूना लैला की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गीत। गीत नक्श लॉयलपुरी का था और फिल्म का नाम था घरोंदा। श्रोताओ, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है। कुर्बानी फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार के साथ कंचन और साथियों की आवाज है। गीत इंदिवर साहब का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अमित कुमार कंचन और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कुर्बानी फिल्म का यह गीत। गीत इंदिवर का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अनुराधा पौडवाल के साथ मनहर उदास का गाया एक खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। समीर की शब्द रचना है, फिल्म का नाम है

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, आज तारीख है 25 जून 2026। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें। आज ही के दिन यानी कि 25 जून सन 1975 की रात 11:40, बहुत ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं, ये बात बहुत कम जगह आपको लिखी मिलेगी और आपको समझ में कम आएगी, लेकिन 25 जून 1975 की रात 11:40 भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब का उस कागज पर दस्तखत करना जो प्रपोजल उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास गवाह है इस बात का। श्रोताओं, ये जो आपातकाल लागू किया गया था और इस आपातकाल के क्या मायने थे, उस समय की संवैधानिक परिस्थितियां क्या थी, व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा आप पीछे जाएं। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं आपको, बहुत कम समय के लिए। 12 जून 1975, भारी तपिश तापमान के साथ राजनीतिक पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। गुजरात चुनाव के नतीजे यानी कि गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे और काउंटिंग चल रही थी, नतीजे आना शुरू हुए थे, और नतीजे जिस तरह से आ रहे थे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नींद को उड़ाने वाले थे, उनके होश हवास उड़ाने वाले नतीजे थे। प्रारंभिक रुझान में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई विपक्ष में बैठा हुआ या बैठी हुई पार्टी सत्ता पक्ष की ओर जा रही थी। आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा में उस समय 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था और कांग्रेस को मात्र 75 सीटें मिली थी। बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में गैर कांग्रेस सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। श्रोताओं, लेकिन इसके थोड़ा सा पहले जाना होगा, 1971 में इंदिरा लहर में हुई अपमानजनक हार के बाद विपक्ष की एकता के द्वारा हासिल की गई ये पहली विजयी पताका थी, यानी कि 12 जून 1975। अब आपको 1971 की थोड़ी सी याद दिला दूं। 1971 में इंदिरा जी की एक विजयी लहर चली थी, उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव हार चुके थे। लोकदल के नेता थे राजनारायण। राजनारायण जी ने अपनी पराजय अस्वीकार कर, उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने अपनी पराजय को अस्वीकार कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रायबरेली के चुनाव नतीजों को चुनौती दी थी, और उन्होंने चुनाव में श्रीमती गांधी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे। 12 जून 1975 का दिन, श्रोताओं ध्यान रखिएगा, 12 जून 1975 ये वही तारीख है जब गुजरात के चुनाव नतीजे सामने आ रहे थे और जो विपक्षी पार्टी थी जनता मोर्चा वह सत्ता पक्ष की ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी दिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा, माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा दिए गए निर्णय ने पूरे देश को चकित कर दिया, अचंभित कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर दिया गया था, और यह वही दौर था जब जेपी आंदोलन बिहार में गुजरात जैसा राजनीतिक परिवेश बनाने में सफल होने लगा था। श्रोताओं, 12
1975 के इस अदालती फैसले ने विपक्ष को एक नई संजीवनी प्रदान की थी और 13 जून को विपक्षी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर इंदिरा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 20 जून को रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और जेपी को दिल्ली ना पहुंचने देने की कोशिश की गई थी। अब 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। सभी दलों के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने सभा को गंभीर बना दिया था और मंच पर मदनलाल खुराना और बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अंतिम वक्ता के रूप में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का जिक्र करते हुए श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग की और सेना और पुलिस से अवैध आदेशों की अनदेखी करने की अपील की। इसी को मुद्दा बनाकर इसी दिन रात 11:40 पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराकर आपातकाल की घोषणा कर दी गई और अगले कुछ दिनों में देश भर में लगभग 2,00,000 से अधिक राजनीतिक लोगों को बंदी बनाया गया था। सेंसरशिप लगाकर प्रेस की आजादी का गला घोट दिया गया था। जेपी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, कृपलानी और अनेक नेता स्वतंत्र भारत में कैदी बनाए गए थे। 21 महीने के आपातकाल में कुछ विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ दमन चक्र ही नहीं चलाया गया बल्कि संविधान को बंधक बनाकर नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। स्पष्ट है कि आपातकाल स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था। श्रोताओं, यह एक ऐसा निर्णय था उस तत्कालीन सरकार का जो भारतीय संविधान में दिए गए मूल और मौलिक अधिकारों पर सीधा सीधा कुठाराघात करता है, जिसका किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में किसी भी संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है वो सीधे नहीं अपनाई जा सकती, उसको संसद में लाना पड़ेगा, संसद के बाद लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये सारी बातें थी जिन्होंने हमारे देश को आपातकाल की ओर ले गया। उसे विश्व इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है, ब्लैक लिस्टेड डे ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड इन इंटरनेशनल हिस्ट्री। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें सोच समझकर निर्णय लेने के लिए बाधित करती हैं या हमें ऐसा बोलती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। श्रोताओं, यह बात हो गई 25 जून 1975 की और 25 जून 1983 पे आइए। भारत विश्व क्रिकेट में अपने झंडे को, तिरंगे को जिस तरह से लहरा रहा था और विश्व क्रिकेट को एक नई दिशा देने का जो काम किया था, वो दिन भी बड़ा यादगार है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने जो कारनामा किया था, जो जादूगरी की थी, क्योंकि आप उससे पहले के इतिहास को देखिए, 1975 और 1979, 1975 का विश्व कप और 1979 के विश्व कप की विजेता टीम वेस्ट इंडीज से भारत का मुकाबला था फाइनल में, और भारत जब इस विश्व कप में शामिल होने गया था तो किसी भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े खेलविदों ने जो इस खेल की, जो इस क्रिकेट की के बड़े बड़े विशेषज्ञ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि भारत जैसा देश जिसकी कहीं कोई संभावना नहीं है, वो फाइनल और वो भी वेस्ट इंडीज से खेलेगा। श्रोताओ, आपको एक उसी विश्व कप की एक एक क्रिकेट की एक उस पारी के बारे में चर्चा करना आवश्यक समझता हूं जो जरूरी है यहां पर, उसके बिना ये खेल आपको समझ में नहीं आएगा। जिम्बाब्वे की टीम उस समय बड़ी नामी गिरामी टीम थी और जिम्बाब्वे के विरुद्ध

भारत बहुत बुरी और कठिन स्थिति में फंस गया था। भारत को जितने रन का टारगेट दिया गया था उस टारगेट को पूरा करने के लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन श्रोताओं,

0: और वो कारनामा आज तक कोई विश्व क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं कर पाया। श्रोताओं, वहां से पारी की शुरुआत हुई 15 रन 5 विकेट और 175 रन की जो पारी नाबाद खेली गई, यानी कि कपिल देव बिना आउट हुए वापस आए थे और एक ऐसा टारगेट दिया था जिस टारगेट को अचीव कर पाना विपक्षी टीम को बहुत मुश्किल था। तो श्रोताओं, यही कला होती है और यही क्रिकेट की ईमानदारी है और यही खेल का रोमांच है। तो आज ही के दिन वर्ष 1983 में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर भारत ने विश्व क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 183 रन बनाए थे, 183 रन का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को। और लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी धजी टीम थी, लेकिन क्या हुआ था, 140 रन पर पूरी टीम सिमट गई और भारतीय क्रिकेट ने पूरी दुनिया में विश्व क्रिकेट को ही बदल दिया था। तो श्रोताओं, ये बहुत सारी बातें होती हैं। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात और करूंगा। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को हैं, स्कूल शुरू हो चुके हैं और बच्चों के कुछ मनमानी बातें चलती हैं और उन मनमानी बातों में सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं सो के नहीं उठूंगा, आज मैं छुट्टी मनाऊंगा। श्रोताओं, ये बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों की बातों पर ध्यान दीजिए, लेकिन उतना ही ध्यान दीजिए जितना जरूरी हो। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक परिवार में मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा जो 4th-5th क्लास का था, बोला मैं चौकोर पराठा नहीं खाऊंगा, मैं गोल पराठा खाऊंगा। अब गोल पराठा कहां से सीखा, हो सकता है पिज्जा बर्गर देखकर उसको दिमाग में आया हो कि गोल चीज ही खानी चाहिए। गोल पराठे की जिद हो गई, गोल पराठा बनाया गया, खाया गया। लेकिन ये जिद जो होती है ना श्रोताओं, बच्चों की ये जिद जो होती है, इसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइएगा। कोई बच्चा अगर स्कूल की फाइल अपने घर भूल गया है तो उस बच्चे को स्कूल प्रबंधन से बोलिए कि वह आपसे स्वयं संपर्क करे और वह स्वयं निपटने की क्षमता रखे। उसकी निपटने की क्षमता को देखिए, उसका परिमापन कीजिए कि क्या बच्चा स्वतंत्र रूप से आपके बिना, आपके पहुंचे बिना, आपकी अनुपस्थिति में किस तरह से उस समस्या का फेस करता है। क्योंकि हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिर्फ यह समझाना है कि जब भी किसी तरह की कोई समस्या आए तो आप उस समस्या से कैसे निजात पाएंगे, आप उस समस्या से कैसे आप निपट सकते हैं। हमें इस तरह की शिक्षा देनी है अपने बच्चों को कि बच्चे अपने आत्मनिर्भर बने, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने आत्म अभिमान के साथ ये सारी चीजों को वे आगे बढ़ाकर ले जा पाए। क्योंकि यही वह बातें होती हैं जो बच्चों के मन में और मस्तिष्क में केंद्रित हो जाती हैं कि मैं कोई भी बात कहूंगा पीछे से माता पिता आ जाएंगे या कोई अन्य रिश्तेदार आकर उसको संभाल लेगा। तो श्रोताओं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही पीढ़ी है जो आगे जाकर इस देश के भविष्य का निर्माण करेगी, आगे जाकर इस देश को आगे ले जाएगी। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो श्रोताओं, अब इन सभी सूचनाओं के साथ अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: धड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया।

0: बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी आकाशवाणी समाचार देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे, जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्म गौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगी गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की

विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगई गुमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको विनोद पुरोहित और अनीसा बेगम के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विनोद पुरोहित के गाए इस लोकगीत।

विनोद पुरोहित की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये योगा गीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। विनोद पुरोहित की आवाज में सुनिए ये

विनोद पुरोहित की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक योगा गीत और आपको सुनवा रहे हैं विनोद पुरोहित की आवाज।

0: विनोद पुरोहित की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये योगा गीत। श्रोताओ, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी शिवपुरी से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनीसा बेगम की आवाज में गाए कुछ लोकगीत, लीजिए सुनिए।

अनीसा बेगम की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनीसा बेगम की आवाज में सुनिए एक और लोकगीत।

अनीसा बेगम के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दौलत फिल्म में आशा जी के साथ किशोर कुमार के गाए इस गीत से। श्रोताओं आपको बता दें कि ये गीत निदा फाजली और विट्ठल भाई पटेल दोनों ने मिलकर लिखा है और संगीतबद्ध किया है RD बर्मन साहब ने। फरमाइशी नाम इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे।

दौलत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा जी के साथ किशोर कुमार साहब को सुन रहे थे। श्रोताओं, आपको बताया था कि ये गीत दो गीतकारों ने मिलकर लिखा था। निदा फाजली साहब के साथ थे विठल भाई पटेल और संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन साहब ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी। हाजी सन्नू मार्केट ए बी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके तमाम पारिवारिक मित्रगण, 40 नंबर कोठी पुरानी शिवपुरी से राशिद खान, बेगम सूफिया बानो और इनके समस्त मित्रगण, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जीतेक बिरक और मीका बिरक, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। श्रोताओं, इन सबकी फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे दौलत फिल्म का ये गीत। आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवा

रहे हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गीत मुकेश के साथ कंचन को। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। सदर बाजार टेकरी रोड शिवपुरी से यशवंत जैन, सुनील जैन, अक्षत जैन, प्रदीप शुक्ला, विनोद शर्मा, पंकज जैन और इनके तमाम मित्रगण, इन सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए धर्मात्मा फिल्म।

क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो तुम, प्यार से प्यारी हो तुम, जान हमारी हो। धर्मात्मा फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और कंचन की आवाज़ में। गीत इंदीवर साहब का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रोताओं, अब हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा रंगीन, बड़ी चित्रकारी किया हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है। लिखने वाली हैं वसीमा खान, हाजी सन्नू मार्केट, एबी रोड, शिवपुरी से। साथ में है जाहिद खान। श्रोताओं, इनका निवेदन है कि रफी साहब का गाया एक खूबसूरत गीत बजा दीजिएगा, बस इतने में हमारी आत्मा संतृप्त हो जाएगी। ये पत्र के लेख है, ये उन्होंने पत्र में लिखा है। तो वसीमा जी और जाहिद खान को विशेष रूप से ये गीत हम सुनवा रहे हैं रफी साहब की आवाज में। हसरत जयपुरी साहब की रचना है और संगीत शंकर जयकिशन साहब का है। इसी गीत को हम और जोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और रिंगेनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इन सब की फरमाइश पर विशेष रूप से सुनवा रहे हैं रफी साहब की आवाज में।

तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। श्रोताओं, ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत था, रफ़ी साहब की आवाज़ थी और शब्द रचना हसरत जयपुरी साहब। आपको बताऊं कि ये हसरत जयपुरी साहब वही हसरत जयपुरी हैं जो एक बहुत बड़ी हसरत लेकर जयपुर से मुंबई पहुंचे थे, और उस समय जब ये मुंबई पहुंचे थे तो आपको बताऊं कि किशोर अवस्था में इन्होंने एक गीत लिखा था अपनी पड़ोसन राधा के लिए। उस गीत का इस्तेमाल बखूबी जिस तरह से राज कपूर साहब ने संगम फिल्म में किया था, गीत था राजेंद्र कुमार पर फिल्माया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। श्रोताओ, यही खूबसूरती होती है लिखने वालों की, यही खूबसूरती होती है उन साजिंदों की जो साज पर आवाज को इस तरह से प्रतिबिंबित कर देते हैं कि सुनने वाले अपना धैर्य खो बैठे। आपको बताऊं इस गीत की खूबसूरती, इस जो गीत अभी हमने ब्रह्मचारी फिल्म का आपको सुनवाया, इस गीत की खूबसूरती के बारे में जब रफी साहब से एक रेडियो इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने शम्मी कपूर साहब के लिए जितने गीत गाए, शम्मी कपूर साहब हमेशा स्टूडियो में मौजूद रहते थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पर लाता था, तब जाकर वो गीत बनता था। और उस उनके साथ, उस अभिनेता के साथ जितनी मेहनत करनी पड़ती थी किसी गायक को, शायद ही कोई अभिनेता ऐसा हुआ हो जिसके साथ इतनी मेहनत करना पड़ी हो। वैसे तो रफ़ी साहब की एक विशेषता रही है कि गीत को गाते और गीत के लय और गीत के अंदाज से पता चल जाता है कि वो किस अभिनेता के लिए गा रहे हैं। लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने शम्मी कपूर साहब के लिए बोला था कि वाह क्या अभिनेता है, क्या चेहरे के एक्सप्रेशन है, और हू बहू जब शम्मी कपूर साहब से यह बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में एकमात्र गायक है जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक हू बहू मेरी तरह उतार देता है, वो है रफी साहब। और श्रोताओ, लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा, क्योंकि फरमाइशी कार्यक्रम है, हमें और भी श्रोताओं का ध्यान रखना है, तो अब हम आपको पंकज उधास साहब की आवाज में एक बेहद खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत

मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास साहब की आवाज में, साथ में थी सदना सरगम। श्रोताओं, इस गीत को लिखा था इंदिवर साहब ने और संगीतबद्ध किया था विजू शाह ने। श्रोताओं, अब हम आप जिस गीत से कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं उस गीत में आवाज पंकज उदास साहब की है और गीत रानी मलिक का, संगीत अनु मलिक का, और गीत को सुनने की फरमाइश की है हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, 40 नंबर कोठी पुरानी शिवपुरी से राशिद खान, बेगम सूफिया बानो और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

0: भी नहीं।
1: चिट्ठी
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नेकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री

देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गयी। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 500 सहायता समूहों को 25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी, या आकाशवाणी
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको पीनाज मसानी की गाई कुछ गजलें सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोमिन की लिखी इस गजल से।

तमाम शहर के रास्ते सजा दिए जाएं। पीनाज मसानी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये गज़ल, शायर थे मोमिन। आपको बता दें कि

सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। मोहब्बत भी क्या शय है ये अल्लाह जाने। श्रोताओ, खुमार बाराबंकी की लिखी ये गजल आपको सुनवा रहे हैं पीनाज मसानी की आवाज में। लीजिए सुन।

मोहब्बत भी क्या शय है ये अल्लाह जाने। पीनाज मसानी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, ये गज़ल शायर थे खुमार बाराबंकी। श्रोताओं आपको बता दें कि सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रेक के बाद सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है। सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं और श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पीनाज मसानी की गाई कुछ गजलें। हरिनारायण नवरंग की लिखी एक गजल आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए।

किस कदर कड़वी हैं सच्चाइयां। हरिनारायण नवरंग की लिखी यह गजल अभी आप सुन रहे थे पीनाज मसानी की आवाज में। श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं दाग दहलवी की लिखी इस गजल से, लीजिए

दाग दहलवी की लिखी और पीनाज मसानी की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रफी साहब के गाए इस गीत से।

तीसरी कसम। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मुकेश को। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का। प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता जी के साथ हैं शब्बीर कुमार और साथी। गीत SH बिहारी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्यार झुकता नहीं। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी के साथ शब्बीर कुमार को। गीत एस एच बिहारी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सुहाग फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, रफी साहब के साथ आशा जी और शैलेंद्र सिंह। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुहाग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रफी साहब के साथ थे आशा जी और शैलेंद्र सिंह। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं आपको बता दें कि फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। रफी साहब के साथ किशोर कुमार का गाया एक अद्भुत और अद्वितीय और खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है दोस्ताना।

दोस्ताना फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ किशोर कुमार को गीत, आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अब हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गायक, दिग्गज अभिनेता और दिग्गज गीतकार और दिग्गज संगीतकार के द्वारा रचा और बुना गया है। दिग्गज संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी, दिग्गज आवाजें रफी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश और साथ में सुर साम्राज्ञी लता जी। इतना अद्भुत संयोग और कहां हो सकता है। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए।

अमर अकबर एंथोनी। श्रोताओ, इस फिल्म का ये अद्भुत और अद्वितीय गीत आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, क्या आप सीन रहा होगा उस समय जब रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश जी, लता जी, आनंद बख्शी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की पूरी टीम और साथ ही सारे साजिंदे बाजिंदे उस स्टूडियो में मौजूद रहे होंगे। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अभिनेत्रियाँ इस फिल्म की। श्रोताओ, क्या अद्भुत दृश्य होते हैं। कई बार कुछ चीज़ें दुनिया में, जीवन में इतनी ऐतिहासिक हो जाती हैं जो कभी ढूंढने से भी ना मिले। ये खूबसूरत गीत के साथ ही आप अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार श्रोताओ, हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हाथ छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, हुस्न हमेशा रुका रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है।

0: शुरू करते हैं आज के विषय पर आपसे बातचीत का सिलसिला। दोस्तों, जिस तरह बदलते मौसम के साथ हमारा रहन सहन बदलता है, उससे पहले हम अपना खान पान बदलते हैं। गर्मी में क्या खाना है या पीना चाहिए, सर्दियों में क्या और आने वाला मौसम यानी बारिश में खान पान कैसा हो, इस बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन समय समय पर करना लाभदायी होता है, और यदि उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन गलत समय पर कर लेते हैं तो उसका गलत असर हमारे स्वास्थ्य पर होने लगता है। जैसे केला, ककड़ी, संतरा, दही, चॉकलेट, चावल इत्यादि। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय कौन सा होता है। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: कौन दीदी बोल रही हैं? कौन मैडम जी बोल रही हैं?
0: जी, हम बोल रहे हैं प्रियंका। आपकी अपनी रेडियो संगीनी कार्यक्रम है आज बात आपकी गीत हमारे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए।
1: कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और शरीर में दर्द कष्ट हो तो हर बात बुरी लगती है, और आकाशवाणी

0: मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर फोन लग जाए तो सब बात हरी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है,
1: जी जी तो आज
0: बड़ी प्यारी लगती है। जी प्रियंका मैडम जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: जी जी
0: और मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका मजनू दीवाना चांद मोहम्मद खान श्रोता बोल रहा हूँ। आप
1: जी बिल्कुल हम पहचान गए, लेकिन आपका परिचय हमारे जो अन्य श्रोता होते हैं उन्हें देना जरूरी होता है, इसलिए हम आपसे नाम पूछते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं पूछते हैं।
0: प्रियंका मैडम जी, आपसे बात एक बार और हुई थी, काफी दिन हो गए।
1: जी बिल्कुल, दो तीन बार हो चुकी है।
0: इत्तेफाक भगवान की कृपा हो गई, परवरदिगार की दुआ हो गई कि आप ही से बात हुई है मैडम जी।
1: अच्छा, अब आज हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। जैसे हम कभी कई बार केला रात में खा लेते हैं तो नुकसान करता है, तो इस बारे में आपके पास जो भी जानकारी है हमें और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: अब मेरा मतलब यही कहने का है मैडम जी कि जो खान पीन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और खाने पीने का सामान होता है उसे समय समय पर ही खाना चाहिए। सभी श्रोताओं से कहना है, जितने ऑल वर्ल्ड के श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन में दोपहर में तो दाल चावल का ही सेवन करना चाहिए और ज्यादा खटाई अटाई इस्तेमाल दोपहर में ही करो, रात में ना करना चाहिए, क्योंकि रात में सर्दी जुखाम का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है और चावल बहुत नुकसानदायक होता है, ये भी मैं बता दूं। और खटाई तो रात में नाइट में बहुत ही नुकसानदायक है मैडम जी, और दिन में कितना भी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि धूप कड़ी होती है और समय सही रहता है, और रात में थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है, तो ये ठंडी वाले जो आइटम होते हैं। और ये बता दूं कि ठंडे कुछ आइटम खाने के बाद पानी भी पीना नुकसानदायक होता है मैडम जी।
1: अच्छा
0: जी जी। और गुड़ जो है तो गुड़ का सेवन तो 12 महीने अगर करते रहो मैडम जी तो बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होता है। और इस समय तो आम का पन्ना और प्याज खूब खाइए तो गर्मी से निजात मिलेगी। और जामुन इस्तेमाल करिए, तो जामुन खाने से मैं बता दूं मैडम जी सबसे बड़ा लाभ, अगर जामुन बंद के आप 1 महीने खा लें तो समझ लो ये शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, और आंखों की जोत नहीं जा सकती। ये आंवला और जामुन में बहुत जबरदस्त गुण है।
1: जी, ये बात तो आपने बहुत ही कारगर बताई है कि जामुन और आंवला जो है ये आपको शुगर फ्री रखता है,
0: ये बहुत फायदेमंद है मैडम जी। जैसे आंवला तो अभी नहीं मिलता, समय के मुताबिक मिलता है, लेकिन अगर जामुन अभी मिल रही है तो जामुन बंद करके अगर कोई भी भाई बहन जितने श्रोता बंधु सुनते हैं तो सुबह के टाइम चाहे खरीद के खाएं चाहे झोल, हमारे यहाँ तो जामुन का अंबार लगा हुआ है, तो मैं भोपाल भेज दूं मैडम जी रोज सुबह टाइम, मतलब यानी कि कुछ नाश्ता पत्ती ना करके इसे जामुन से ही सेवन करिए, तो मेरा दावा है कि कोई बीमारी कोई मर्ज नहीं आ सकती है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं फेल कर सकता।
1: जी, तो आपका जो कहने का हम अगर निष्कर्ष निकाले तो ये हो सकता है कि जो मौसमी फल होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए और अधिक से अधिक सुबह के समय करना चाहिए।
0: हाँ, सुबह के टाइम सही रहता है मैडम, ये फायदेमंद रहता है, और फिर तो दिन भर खाते रहो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि खाना खाने के बाद कोई और चीज का सेवन करो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी, और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और इतनी लाभप्रद जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को देते रहिए। शुक्रिया,
0: नमस्कार जी।

0: हेलो। हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड
0: आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है।
1: जी मैम। अभी आ रही हूँ मैम
0: हाँ अभी आ रही है। बिल्कुल बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी
1: जी।
0: बता दिए।
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से। थैंक
0: राय बरेली से पिंकी जी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: यू मैम। हम बहुत मैम आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं से जब इतनी अच्छी बात होती है तो हम और अच्छे हो जाते हैं। पिंकी जी
1: जी और
0: आज
1: मैम
0: ही
1: हम लोग आपका इंतजार से हैं, और जब आपसे मुलाकात हो जाती है ना तो मैम बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी, और खुशी मिलती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता होगा, है ना?
1: जी मैम, क्योंकि मैम रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है, और जब
0: जी जी
1: रेडियो पर अपनी आवाज सुनाई देती है ना तो मैम इसकी खुशी और भी ज्यादा
0: अलग
1: हो
0: ही
1: जाती है।
0: होती है। बिल्कुल। तो ये फोन इन कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो यही है कि श्रोता अपनी आवाज भी सुन सकते हैं।
1: जी और
0: जी
1: मैम सभी श्रोताओं की भी आवाज सुनने को मिलती है, और देश विदेश से मतलब श्रोता जुड़ते हैं
0: जी
1: और अपने क्षेत्र के बारे में विशेषताएं बताते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है और
0: जी
1: सब
0: जी जी
1: चीजें जानने को मिलती हैं रेडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता
0: जी
1: है।
0: पिंकी जी, अब हम आपसे आज के विषय के बारे में बात करें।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। इस विषय में आप क्या जानती है, बताइए।
1: जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें मैम ज्यादा करके तो मैम दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए, ना कि
0: लेकिन
1: कोल्ड ड्रिंक
0: हाँ
1: का और

0: चीजों का मतलब खान पान नहीं करना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और
1: लेकिन
0: मैम योगा भी
1: हम ये
0: करना
1: जानना
0: चाहिए,
1: चाहते हैं।
0: क्योंकि अभी हम लोगों ने मतलब योगा दिवस भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय, तो मैम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख।
1: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पिंकी जी, कि जैसे आपने कहा कि दही का सेवन करना चाहिए, छाछ मठा वगैरह, तो इसका एक विशेष कोई समय आप बताएंगे कि कब करना चाहिए, या दही का सेवन गर्मियों में कब ज्यादा लाभकारी होता है?
0: मैम जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो उसके साथ ही खाएं, और
1: जी
0: मैम जैसे करके अगर दही छाछ को हम खाते हैं तो मैम ये भी हमारे सेहत मतलब लाभदायक होता है। जी
1: अच्छा, तो चलिए पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने
0: और
1: हमें ये
0: मैम
1: जानकारी दी।
0: गाँव में तो जब चीनी मिक्स करके मतलब जैसे इसका घोल बना के पीते हैं खाते हैं ना, तो ऐसे में मतलब ज्यादा पसंद करते हैं खाना।
1: जी, चलिए पिंकी जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: जी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: हाँ दीदी, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गंजबार प्रतापी।
0: जी? साहू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल।
0: और आज हम जानना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। अब उसमें से कोई भी खाद्य पदार्थ आप चुन सकते हैं कि जिसके बारे में आप जानकारी दें कि इसका सेवन कब करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात।
1: तो दीदी भी तो देखो, खाद्य पदार्थ चीजों में तो देखो बहुत चीजें आती हैं, केला भी है, सेब भी है, ठीक है जी, ऐसी चीजें सभी आती हैं,
0: जी,
1: ये
0: तो हम
1: प्रसिद्ध
0: जानना चाहते
1: जड़ी
0: हैं कि
1: बूटी
0: इनका सेवन का समय जो है वो कौन सा समय ज्यादा लाभकारी है।
1: है। दीदी वो तो देखो, समय के अनुसार सब फल आते हैं और समय के अनुसार खाना चाहिए वो,
0: जैसे
1: बिल्कुल। समय के बिना, समय के तो खाना बिल्कुल सही नहीं है।
0: जैसे आप बताइए कि कौन सा फल या कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो बिना समय नहीं खाना चाहिए।
1: दीदी वो तो समय से खाओगे तो सही रहेगा, जैसे अभी आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम खा सकते हैं,
0: कब खा
1: केला आ
0: सकते हैं
1: रहा
0: ये
1: है।
0: बताइए, सुबह ज्यादा लाभकारी होता है या दोपहर में या शाम में।
1: नहीं, सुबह सुबह में लाभकारी होता है, केला खाओगे बहुत लाभकारी होता है,
0: और
1: और सेब खा लो वो भी लाभकारी है, अंगूर वगैरह भी आप बाहर में ले लो सुबह के टाइम,
0: सुबह के समय, जी,
1: बिल्कुल।
0: बहुत
1: ये सब चीजें पौष्टिक आहार है, बहुत
0: पौष्टिक
1: फायदेमंद
0: आहार है।
1: चीज है
0: और
1: ये।
0: सुबह के समय अगर हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये 4 गुना लाभ देता है। ठीक
1: अरे
0: है
1: बिल्कुल, क्यों नहीं देगा दीदी,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल देगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने हमें फोन किया और ये जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को बताई। नमस्कार।
1: बिल्कुल दीदी, नमस्ते।

0: Jio, Jio, color the house, Jio. उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रसल

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: बताइए अपना परिचय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेलीखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है। आज कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे। तो बताइए, खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय क्या है और आप कौन सा खाद्य पदार्थ चुनकर हमें बताएंगे कि इसे कब खाना चाहिए?
1: देखो, मौसमी जो रहते हैं ना, फल सब्जी वगैरह रहती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए।
0: जी,
1: और ये खाना में सलाद अलाद वगैरह ये जरूरी है लेना।
0: ये कब लेना चाहिए सलाद, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप? सुबह लेना चाहिए या नाश्ते के समय लेना चाहिए, लंच के समय लेना चाहिए या शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप
1: जी,
0: बताएंगे?
1: सुबह ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपका कहना है कि सलाद सुबह खाना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हमें शाम को खाने से अवॉइड करना चाहिए या सुबह ले लेना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइए हमें।
1: शाम के समय क्या है कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से पहले ही खाना खा लें। माने ऐसा नहीं कि रात की 10 बजे या 11-12 बजे खा रहे हैं अपन, ये गलत है।
0: जी जी
1: और शाम के समय ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से जल्दी
0: पचने में आसान हो।
1: डाइजेस्ट

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे फोन इन कार्यक्रम है। जरूर
1: रखा गया है इस बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में।
0: जी बिल्कुल, हम आपसे विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं जिला संगम प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं
1: और
0: आप
1: ये विषय जानना चाहते हैं हम।
0: जी? विषय हमारा है कि जो हम कई बार केला, संतरा या अंगूर या अन्य कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे दही हो गया और चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम है, तो इनको हमें कब खाना हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर होता है ये बताइए, या इससे अलग और कोई खाद्य पदार्थ जो आप जानते हो तो उसके बारे में बताइए हमें कि कब उसका सेवन सही होता है।
1: ये इन सब चीजों का सेवन तो जब हम ये व्रत उपवास वगैरह रहते हैं और जो है इनको कि जब अपनी ज्यादा इच्छा हो तो तभी खाना, तो ज्यादा अपने को भूख बांधे रह लेंगे तो।
0: अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि हमारा केले खाने का मन रात में बहुत हो रहा है तो क्या खा लेना चाहिए हमें?
1: तो ये इन फलों का उपयोग हम ज्यादा व्रत और उपवास में ही ज्यादा करते हैं
0: जी जी
1: और वो जो है
0: लेकिन समय कौन सा सही रहता है? जैसे केला सुबह ज्यादा लाभदायक होता है, वो आपका वजन बढ़ाता है, तो इस तरह और कोई खाद्य पदार्थ की बात हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: हाँ, जैसे

0: हेलो,
1: हाँ जी, ग्राम बालोदा लक्का तहसील बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश है, कन्हैयालाल प्रजापति।
0: जी कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आनंद मंगल है।
0: बढ़िया, आनंद मंगल चल रहा है।
1: हाँ, अभी पानी का इंतजार में बैठे हैं सभी, साथ खेती है हमारे पास, तो
0: हाँ,
1: अगर सोयाबीन लगाएंगे, अगर पानी अच्छा गिर गया तो सोयाबीन लगाएंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं।
0: तो ये बताइए कि आप जो ये सोयाबीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे खान पान में किस तरह से असर करती है सोयाबीन?
1: ये तो विटामिन बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो इसका तेल वगैरह भी निकलता है और कई।
0: तो सोयाबीन किस तरह से खाना चाहिए, आप ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ, सोयाबीन इसको है ना, वो गला करके खाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है कि विटामिन सबसे अधिक इसमें रहता है। क्या?
0: अच्छा, और ये कब खाना चाहिए, सुबह को या रात में?
1: सुबह में, सुबह में, सुबह में।
0: अच्छा, तो इसे क्या रात में गला कर रखते हैं फिर सुबह खाना चाहिए, या आप 2 घंटे पहले गला दें और खा ले, ऐसा कोई?
1: दो तीन घंटे पहले गला करके फिर बाद में खाना शुरू कर दो, विटामिन एक नंबर रहता है।
0: अच्छा, और उसका पानी वो जो निकलता है गलाने के बाद में, वो पानी किस उपयोग में लाया जा सकता है?
1: हाँ, वो पानी भी ले सकते हो, क्या पीने के लिए भी ले सकते हो, वो भी अच्छा पानी।
0: चलिए कन्हैयालाल जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो अब फसल आने वाली है, तो उसको लेकर भी जो हमारे श्रोता हैं, तो वो थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि सोयाबीन हमारे लिए फायदेकारक है और उससे विटामिन मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और सुनते रहिए कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे और

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ जी मैडम,
1: जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम।
0: मंदसौर से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल मेहर।
1: जी स्वागत है मनोहर लाल जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: बढ़िया है। बारिश की क्या तैयारियां चल रही है आपके
0: बारिश
1: यहाँ?
0: तो अभी हुई नहीं है, बारिश की संभावना है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: गर्मी हो रही है और संभावना है, तो बारिश में ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें उसे सुबह खाना चाहिए या रात में खाना चाहिए, दिन में, ऐसी कौन सी?

0: जानकारी है आपके पास?
1: अभी तो हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बारिश हो ही नहीं है। सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हल्का फुल्का भोजन ले, ये तेल की जो बाजार की जो चीजें हैं ये खाना बंद कर दे, और अपने जो घर पे जो जैसे कोई दलिया बनाओ, जैसे हल्की फुल्की कोई चीजें बनाओ तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा।
0: लेकिन ये है कि दलिया तो हम शाम को खाएं ताकि पाचन भी आसान हो और हल्का फुल्का भी रहता है, लेकिन
1: हाँ, और सवेरे टाइम क्या है कि वो मूंग की दाल बना लो और रोटी, सादी रोटी खाओ
0: हर रोज
1: हर रोज।
0: हाँ, तो जैसे आपने बताया कि मूंग की दाल, तो हमारे अभी एक पहले कॉलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मूंग किस तरह से फसल में उगाए जाते हैं और उसका किस तरह से फर्टिलाइज करके और हम तक पहुंचता है। तो ये जो मूंग की दाल होती है, या इसके अलावा और कौन सी पौष्टिक चीजें होती है जो जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हो?
1: पालक वगैरह, मेथी की सब्जी, ये ऐसे कुछ सब्जी ऐसी है जो लौकी की सब्जी है, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये समझो और समझो।

श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमने जानना चाहा कि किसी भी वस्तु के सेवन का सही समय क्या होना चाहिए। शोध के अनुसार अक्सर ये होता है कि बच्चे जब चॉकलेट मांगते हैं हम उन्हें कभी भी दे देते हैं, लेकिन रात में चॉकलेट खाना इसमें कैफीन बहुत होता है जिसके कारण वो नुकसान करता है। सोने से पहले टमाटर खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। संतरा और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन पूरी तरह खाली

भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3,62,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल से प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्ग जनों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का अंतरण कर रहे हैं। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों में लिखकर भेजते हैं। सुनिए गीत हेमलता के स्वर में। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बेलई जिला सागर से। श्रोता हैं लक्ष्मण रायकवार, श्रीमती विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रायकवार और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। अगले श्रोता राजावत परिवार हैं मध्य प्रदेश से। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि, रशिद, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरिंगी छत्तीसगढ़ से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुबेदा से। इस गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार ए आर रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिव हरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद। अगली श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

धारावाहिक में अब तक आपने जाना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा ध्युम्सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ आया, जहां की राजा आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रय दिया था। भुवन मोहिनी ने जब देखा कि उसके आश्रय दाता की बेटी राजकुमारी चंद्रहासिनी राजकुमार के प्रति आसक्त है, तो वो अपने प्रेम का बलिदान करने को तत्पर हो गई। उसने चंद्रहासिनी को विश्वास दिलाया कि वो उसका विवाह राजकुमार से अवश्य करवाएगी। राजकुमार ने संदेशवाहक से भुवन मोहिनी को अपने आवास पर बुलवाया, परंतु हज करके राजकुमारी चंद्रहासिनी भी आ गई।

भुवन मोहिनी ने राजकुमार से चंद्रहासिनी को अपनाने का आग्रह किया, परंतु विजय श्रवा ने साफ साफ कह दिया कि भुवन मोहिनी का जो स्थान उसके हृदय में है

0: जहां राजकुमार के माता पिता मिले। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। अब आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी में।
1: सम्राट दुमत सेन की
2: जय।
1: सम्राट दुमत सेन की
2: जय।
3: समस्त खंड राज्यों के राजा महाराजाओं को भारत सम्राट दुमत सेन का यथा योग्य अभिवादन। इंद्रप्रस्थ मेले के इस पुनीत अवसर पर हम सब अति गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये प्रश्न है भारत पर ह्यूणों का आसन्न आक्रमण। हम देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर ह्यूण जाति के बाहरी लोग लगातार छुटपुट आक्रमण कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि ह्यूण बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और हमारी पुण्य पावन धरती को छीनना चाहते हैं। इस हेतु आप सबकी अंत इच्छा को हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
4: हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।
3: हमारी भी यही इच्छा है, पर आप लोग जानते हैं कि हमारी आयु अब बहुत हो चली है। ऐसी स्थिति में क्या आप सब खंड राज्य के अधिपतिगण इस सभा में उपस्थित हमारे युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व को स्वीकार करने की सहमति देते हैं?
5: इसके पहले कि आप सब किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन युवराज विजय श्रवा के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
6: अवश्य अवश्य अवश्य।
5: क्योंकि आप में से कई नरेशों ने युवराज विजय श्रवा की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा, क्या आपकी अनुमति है?
6: अनुमति है, अनुमति है।
5: माननीय सभासदों, कुमार विजय श्रवा ने अतीत में हुए मगध और सूद प्रदेशों की लड़ाइयों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने जिस चतुराई से इन युद्धों का संचालन किया था, वैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। युद्ध में किस तरह साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर शत्रु को चारों खाने चित करना चाहिए, युवराज को भली भांति जानकारी है। उन्होंने यह कला किसी और से नहीं, अपने यशस्वी पिता सम्राट दुमत सेन से ही सीखी है। युवराज विजय श्रवा ने मगध के युद्ध में जिस प्रकार मोर्चेबंदी की, वह अविस्मरणीय है। विपक्षी सेना को पता चला कि युवराज विजय श्रवा की सेना घबरा गई है और पीछे हट रही है, तो वो पीछा करने में लग गई। जैसे ही युवराज ने देखा इस पीछा करने की कार्यवाही में शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई है, तो उन्होंने अपने सुनियोजित एक ही प्रबल आक्रमण से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। मित्रों, हमें हूणों के साथ ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध की नीति अपनानी होगी। मत भूलिए कि हूण अत्यंत ही बर्बर और आक्रामक जाति है, जिसका इस धरती पर प्रवेश मात्र हमारी दासता को आमंत्रण नहीं होगा, अभी तो हमारी संस्कृति का सर्वनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
6: हमें युवराज विजय श्रवा का ही नेतृत्व चाहिए।
3: तो अब हम यही निर्णय मानते हैं कि युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व में समस्त खंड राज्यों की सेनाएं हूणों से युद्ध के लिए तैयार की जाएं। युवराज का क्या कहना है?
7: सभी महामहिम नरेशों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भावी युद्ध आप सब वयोवृद्धों के आशीर्वाद और आदेशों से लड़ूंगा। हमें राष्ट्र के युवकों में वीरता की ज्योति जगानी पड़ेगी। उनके भालों को लोहित टीकों द्वारा सुसज्जित कर रणभूमि में भेजना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सेना के साहस और शौर्य को बहुगुणित करते हुए शत्रु दल को शीघ्र ही पराजित कर भारत की विजय पताका फहराऊंगा। कृपया मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहेंगे धन्यवाद। कितनी अद्भुत बात है।
2: कौन सी बात?
7: जिस विजय श्रभा को हम अकर्मण्य और विलासी समझते थे, उसने तो युवाओं में उत्साह भर दिया।
8: राजमाता, आज राजकुमार जी ने राष्ट्र में नए प्राणों का संचार कर दिया।
9: अरे ये सब मेरी भावी पुत्रवधु चंद्रहासिनी के सौभाग्य का परिणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में चंद्रहासिनी का प्रवेश जैसे ही हुआ, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने लगा। क्यों चंद्रहासिनी?
8: ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस

0: कि कहीं मैं विलासी बनकर स्वाभिमानिनी माता का दूध कलंकित न करूं। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करके रहूंगा। इसीलिए मां, उसी समय मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा।
1: पुत्र?
0: हाँ मां, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल। अपनी इस वृद्धा माता की भूल को क्षमा करो। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने ही हृदय के टुकड़े को कठोर और अपराध युक्त वाकवाणों से बींध कर उसका बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, किंतु तुम्हारी निश्चल तपस्वी मूर्ति को देखकर मेरा हृदय स्वयं अपने कहे वाकवाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ा, वो भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है। इन समस्त त्रुटियों को करते हुए भी चंद्रहासिनी को मैंने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कर लिया है पुत्र, और महारानी कुमुद वल्लभा को मैंने और महाराज आदित्य सेन को सम्राट ने वचन दान भी कर डाला है। क्या मातृ पितृ सेवी पुत्र से अवज्ञा की आशा की जा सकती है? क्या सम्राट और मेरे वचनों का कोई मूल्य नहीं है मेरे पुत्र? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी भी तुमसे छीना था हमने? यदि नहीं, तो आज की राजपुत्रियों में चंद्रहासिनी ही सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है, जो अक्षय यौवना, अनिंद्य सुंदरी, पारंगत विदुषी और विनय पूर्ण आज्ञाकारिणी है। उसका समग्र जीवन चरित्र और सौंदर्य निष्कलंक है। फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधु बनाने का लोभ मैं कैसे संवरण करूं? तुम ही बताओ।
0: मां, मैं अपनी ओर से जो कुछ चंद्रहासिनी को दे सकता था भुवन मोहिनी को साक्षी बनाकर दे दिया है। इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं विवाह आदि के बंधनों में जितना ही उलझूंगा, राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाएगा। इसलिए मां, महान दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का मंगल कार्य तुच्छ है, चाहे साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। आप जानती हैं मां, अनासक्ति की तुलना में सर्वदा आसक्ति ही पराजित हुई है। फिर भी आप ये सब कह रही हैं?
2: एक और

मैं राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो रहा हूं, और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रहासिनी से विमुख भी हो रहा हूं। समग्रता में क्या उचित है क्या अनुचित नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कल तक मैं शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु आज तो मैं स्वयं के होने का भावार्थ समझ गया हूं। आज मेरे लिए जीवन का एक भी क्षण मूल्यहीन नहीं है, वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। मेरे माता पिता ने मेरी उपेक्षा की, सुनसान पहाड़ियों में, जंगलों में निरुद्देश्य भटकता रहा मैं, परंतु अब उन्हीं माता पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य और आशीर्वाद की त्रिवेणी निकल रही है मेरे लिए। मुझे जो चाहिए था

थारा नगरी को प्रस्थान करने की तैयारी करो। और हां, किसी भृत्य को कहो कि शीघ्र जाकर भुवन मोहिनी को मेरा संदेश सुनाए कि वो भी मेरे ही साथ मेरे रथ में बैठकर मातृभूमि की यात्रा करने की शुभ आयोजना में संलग्न हो। उसके भृत्य और वैयक्तिक संपत्ति आदि जो भी हो वो अपने रथ में लेकर शीघ्र ही पर्णकुटी में आ जाए। और हाँ, उससे निश्चित रूप से स्मरण करा दिया जाए कि एक दिन उसके निर्वास

0: मैं अभी जाता हूं।
1: क्या सोच रही है हमारी भावी पुत्रवधू?
2: राजकुमार ने भुवन मोहिनी को बुलवाया है।
1: अच्छा,
2: अपने साथ धारा नगरी ले जाने के लिए वो तैयारी भी कर रही है।
1: कोई बात नहीं पुत्री, इसमें तुम परेशान न हो, मैं अपने पुत्र को अच्छी तरह जानती हूँ।
2: माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाऊँ।
1: तुम्हारी भी इच्छा है, परंतु पुत्री हम लोग तो धारा नगरी बाद में पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हमें सम्राट के साथ संपूर्ण देश की परिक्रमा करनी है। तब तक तुम अकेली प्रासाद में कैसे रुकोगी? देखो पुत्री, कुछ दिन और धैर्य रखो, उसके बाद शीघ्र ही तुम हमारी पुत्रवधू बनकर राज प्रासाद की स्वामिनी बनोगी। फिर भी यदि हमारे युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले जा सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य ले लेना।
2: धन्यवाद माँ, मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी, परंतु अब मुझे फिर से भुवन मोहिनी की

0: ठीक है, जाती हूँ भुवन मोहिनी के पास।
1: अरे राजकुमारी जी आइए, बस मेरा सामान रथ पर रखा ही जा चुका है। राजकुमारी मेरे गले लगिए, मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपके पिता महाराज की, उन्होंने मुझे आश्रय दिया था। अरे आप अनमनी मत होइए, मैं जब तक आपको राजकुमार के हृदय का हार नहीं बनवा दूंगी शांत न होंगी। राजकुमार आपको अवश्य स्वीकार करेंगे।
0: सखी, हृदय में जिस प्रेमाग्नि की लपटें धधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की अश्रुधाराओं से बुझने ना पाए, बस यही तुमसे प्रार्थना है। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि राजकुमार के ओझल होते ही मेरे जीवन की समग्र प्रसन्नता लूट जाने वाली है। मेरे नेत्र आंसुओं को नहीं संभाल सकते, मैं असहाय अपने जीवन को बचा ना सकूंगी। बताओ बताओ सखी, मैं क्या करूं जिससे वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो।
1: राजकुमारी जी, संयोग वियोग मानव जीवन का अटल धर्म है, इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर सहन करो या रोकर। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय और संयोग वियोग का सम्मिश्रण ही तो मानव जीवन का लेखा जोखा है।
0: सखी, मैं मानव जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न यही जान सकी हूँ कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है और ये जीवन में क्यों प्राप्त हुआ।
1: किंतु इसे तो जानना पड़ेगा राजकुमारी।
0: अवश्य प्रयास करूंगी, किंतु मात्र राजकुमार विजय स्रवा के माध्यम से। अकेले न मैं कुछ कर सकती हूँ न समझ सकती हूँ। विजय स्रवा के बिना मैं उस सरिता का शून्य अंक या गर्व ही बनी रहूंगी जिसका गंभीर और जीवनप्रद सरस रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्व ही सूख चुका है और जो शून्य से अधिक कुछ भी नहीं।
1: राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ धारानगरी चल सकेंगी? युवराज से मैं आज्ञा ले लूंगी इसके लिए, निश्चिंत रहिए।
0: धन्यवाद सखी, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ।
1: हाँ हाँ।

0: सारथी, राजकुमार के वापस लौटने की सूचना पाकर न जाने कितनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची है। भुवन मोहिनी भी कब की आ चुकी हैं, परंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे भुवन मोहिनी ही नहीं, राजकुमारी भी आई हैं।
0: क्या कहते हो?
1: मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा।
0: नहीं, मैं भी जाकर युवराज को बताता हूँ।
1: हाँ हाँ जाओ।
0: मित्र मित्र मित्र
2: क्या है अरण्यक?
0: देव, भुवन मोहिनी पर्ण कुटी में आ चुकी है, किंतु उनके साथ साथ राजकुमारी चंद्रहासिनी भी पधारी हैं।
2: अरे तो ऐसा करो कि तुम उन दोनों की सेवा में प्रस्तुत रहो, और जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं उन लोगों के बीच आ जाऊंगा और हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
0: बहुत अच्छा मित्र, अभी जाता हूँ।
2: बस बस, देखिए अब अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, यात्रा में विलम्ब होगा। आप सब जोश बनाए रखिए और आगामी युद्ध की तैयारी करिए।
3: युवराज विजय शर्मा की जय।

0: आज हमारे स्वतंत्र पुनर्मिलन का अति मूल्यवान क्षण उपस्थित हुआ है और संयोग से उसमें भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रहासिनी भी उपस्थित है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं।
1: देव चिरायु हो, मेरे समस्त सुख वैभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं जब देव के पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन क्षण व्यतीत होते हैं। फिर भी देव के श्रीमुख से पुरस्कृत किए जाने का विशेष आदर पाकर मैं कृतार्थ हूँ।
0: आज तो राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है।
1: हाय, बलिहारी जाओ राजकुमार, कम से कम इतना तो कहा।
0: ओ रूप की जादूगरनी, अनमोल मोल का सौदा करके तुमने मुझे प्रेम की एकांत साधना से विचलित कर दिया है। मेरी पलकों में नाचकर तुमने अंतर के प्रेम रहस्य को पहचान लिया है। तुम परजोरी से वहां प्रवेश कर चुकी हो जहां भुवन मोहिनी चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती आई है। तुमने एक अपराजिता सौंदर्यमयी नारी को भी अपने मायावी रूप के बंधन में जकड़कर उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया है। तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपने पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल कर मुझे मद विह्वल करते जा रहे हैं। मैं इनका जितना ही चक्षुपान करता हूं मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है।
1: देव, मेरा पुरस्कार मुझे मिलेगा?
0: हाँ हाँ, तुम मांगो तो।
1: एक बार आप और सोच लें, मैं जो कुछ मांगूंगी वो आपको देना ही होगा।
0: बस वो वस्तु मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान न हो। मैं अगणित भुवन मोहनियों और चंद्रहासिनियों को अकेला प्यार करूंगा। चिर अद्वैत आज द्वैत की भावना से मूर्तिमान है। प्रेम वासना का प्रतिनिधि है।
1: मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अनंग का रंग तपस्वी विजय श्रवा की पवित्र नाड़ियों में मोहित मूर्छना का विष

0: मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी देकर अपने दानी होने का परिचय दूंगा। तुमने देर की है, एक के स्थान पर दो पुरस्कार मांगो।
1: देव, दूसरा पुरस्कार तो भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हूँ, परंतु पहला पुरस्कार यही मांग रही हूँ कि राजकुमारी चंद्रहासिनी हम लोगों से क्षण भर के लिए भी विलग ना हो।
0: क्या? मैंने वचन दिया, परंतु ध्यान रहे, यदि भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दूर होता दिखाई पड़े तो उस स्थिति में संपूर्ण दोष का दायित्व तुम्हारा होगा। जानती हो ना, मानव जीवन पतन का भी इतिहास रहा है।
1: राजकुमारी, मैंने अपनी प्रियतम सौगात आपको अर्पित कर दी है। हो सके तो इस सागर से बिंदु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देना, किंतु वो कभी बदला चुकाने की दृष्टि से न हो। राजकुमारी, आपने मुझसे जब जो कुछ चाहा है वो सब मैंने आपको अर्पित किया है। अब आप मेरी छोटी बहन बनी है ना, किंतु हमारा ये संबंध बहुत एकांत का है। समाज और संसार की दृष्टि में आप एक महामहिमामयी और मैं मात्र एक तुच्छ नारी हूँ।
2: बहन, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मेरी वाणी में शब्द नहीं है। तुमने बारंबार मेरे जीवन को आत्म प्रवंचना और आत्म प्रताड़ना के गर्त से ऊपर उठाकर सुख शांति और समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है। देव स्वयं साक्षी हैं। तुम अपने महान दैवी संपत्ति द्वारा अपने जीवन को सजाकर एक अशुभ नारी से अब देवी बन चुकी हो। मैं तो शक्ति, अहंकार, अहमन्यता और सत्ता की गोद में पलकर साधारण मानवी हूँ, भले ही मेरा बाह्य स्वरूप महानता का परिचायक हो।
1: मेरी बहन,
0: ये नारी जिसने अपना अंतर और वाह मेरे लिए बिखेर रखा है, मैं उसे कब से समेट कर अपने आप में छिपा लेना चाहता रहा हूं, किंतु मैं उसका बिखरना रोक नहीं पाता। मैं उसे अपने आप में समेट नहीं पाता।
1: देखा राजकुमार, मेरी छोटी बहन की महानता को? स्वयं इतनी विशाल हृदय होकर मेरा गुणगान करने चलिए।
0: भुवन मोहिनी, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं सका। जब भी मैं अपनी समझ की परिधि में तुम्हें घेर लेता हूँ, तभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का ना जाने कितना भाग अभी भी मैं स्पर्श नहीं कर सका। समझ की परिधि के भीतर लाना तो दूर की बात है।
1: ये भी देव की ही कला है। मुझे आदर देकर वो राजकुमारी को ही प्यार जता रहे हैं। अच्छा, अब देव का आदेश हो तो अरण्यक सबको भोजन कराएं।
0: अवश्य प्रिय, भोजनादि करके सब लोग शीघ्र ही सो जाएं और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धारा नगरी को निकल पड़े।

संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर

महिला सभा सुनने वाली श्रोता बहनों को एक साथ तय समय पर रेडियो सेट के करीब लाने की जिम्मेदारी आज है हमारी। तो बहनों, आप सबको आपकी अपनी सखी सुधा मिश्रा का नमस्कार। हम आपको बता दें बहनों कि हर वर्ष 25 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। बहनों, यह दिवस उन लाखों नाविकों और समुद्री कर्मियों को समर्पित है जो समुद्र की अथाह गहराइयों और कठिन परिस्थितियों के बीच बने रहकर वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि अगर नाविकों के पहिए थम जाएं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति भी प्रभावित हो सकती है। बहनों, विषय कुछ ऐसा है कि हमारे और आपके लिए रोजमर्रा से थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन इन अनदेखे नायकों को जानना भी तो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि बहनों, आज भी पूरी दुनिया का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे में नाविकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र में कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर काम करना, मौसम अपने विपरीत भी हो तो भी काम करना, तूफानों और अनेक चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और अदम्य साहस के बल पर ये नाविक विश्व के देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। भारत जैसे विशाल समुद्री तट वाले देश के लिए भी नाविकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समुद्री कर्मियों ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता से विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन समुद्री मार्ग से होता है। भोजन, दवाइयाँ, ईंधन, मशीनें और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कई वस्तुएं समुद्री जहाजों के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश तक पहुँचती हैं। इस दृष्टि से नाविक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन को सहज और सुचारू बनाने में अनेक ऐसे लोग भी योगदान देते हैं जो प्रायः हमारी नजरों से दूर होते हैं। इसलिए आज का दिन उन अनदेखे नायकों को धन्यवाद देने और उनके योगदान का सम्मान करने का दिन है। और चलिए कुछ ऐसे ही भावों से ओतप्रोत हम सुनवाते हैं आप

0: और बहनों, अब हम आपको लिए चलते हैं आज की अपनी भेंट वार्ता की तरफ। हमारी भेंट वार्ता का विषय है मधुमेह, हृदय रोग और योग। योगाचार्य अवनीश तिवारी जी से बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने।
1: श्रोताओ, योग के क्षेत्र में योगाचार्य अवनीश तिवारी जी का नाम आज बहुत ही जाना पहचाना है। तिवारी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे श्रोताओं के बीच में।
2: नमस्कार।
1: और आज का हमने विषय जो निर्धारित किया है वो है मधुमेह, हृदय रोग।

0: या कहें कि शरीर का एक ऐसा लक्षण है जो अगर आ जाता है तो बहुत परेशान करता है
1: जी,
0: और फिर वो छूटता भी नहीं
1: जी,
0: एक लंबे समय तक छूटता भी नहीं है। कहीं योग का सहारा लेता है व्यक्ति, कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों का, कहीं होम्योपैथी दवाइयों का, कहीं एलोपैथी दवाइयों का, जिसको जो समझ में आता है उसका वो सहारा।

0: लेके उसको नियंत्रित करने के लिए परेशान रहता है, भाग दौड़ भी करता है शरीर को एडजस्ट करने के लिए। आज का हमारा विषय इसीलिए मधुमेह, हृदय रोग और योग, ये मधुमेह और हृदय रोग दोनों जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: आज हम आपसे योग के माध्यम से बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे
1: जी।
0: कि योग क्या कहता है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वो विधि बताएं हमारे श्रोताओं को कि मधुमेह के चपेट में हम आए तो उससे पहले बचाव के उपाय क्यों नहीं।
1: बहुत सही कहा आपने। देखिए, योग एक जीवन की शैली है, एक लाइफस्टाइल है
0: जी।
1: उस लाइफस्टाइल के माध्यम से आज मधुमेह जो है महामारी बनती चली जा रही है
0: जी।
1: हृदय रोग भी उसका एक पार्ट है
0: जी।
1: उससे अपग्रेड होंगे तो हृदय रोग है
0: जी।
1: तो मधुमेह के तीन दुश्मन हैं
0: जी।
1: पहला दुश्मन आपका है मस्तिष्क
0: जी।
1: यदि मधुमेह आपका बढ़ रहा है तो कभी भी ब्रेन हेमरेज आपको हो सकता है
0: जी,
1: इन्फॉर्क ब्रेन में हो सकता है
0: जी।
1: दूसरा उसका दुश्मन है हार्ट
0: जी,
1: मायोकार्डियल

0: पहली बात यह है कि योग हमको जीना सिखाता है
1: जी।
0: हमें क्या खाना है
1: जी,
0: कितना खाना है
1: जी,
0: कैसे खाना है
1: जी,
0: कैसे चल रहा है, कितनी एक्सरसाइजेस देना है
1: जी,
0: अपने ऑर्गन को कितना अच्छा बनाना है
1: जी,
0: ये हमको योग सिखाता है
1: जी।
0: योग एक तकनीक है।

0: रक्तचाप का क्योर नहीं है जी, क्योंकि सारी बीमारियां लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं
1: जी,
0: आपकी जीवन शैली कैसी है
1: जी।
0: यदि हमने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन कर दिया तो हम इन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं।
1: हम चाहते हैं कि वो जीवन शैली हमारे श्रोताओं को आप बताएं
0: जी,
1: जिससे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सके।
0: बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात यह कि हमें अपने परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हुए हैं, 24 घंटे में से हम एक सवा घंटे अपने आप को दें, बाकी 23 घंटे दुनिया को बांटते हैं।
1: क्या बात है।
0: वह अपने आप का एक कैप्सूल तैयार करिए आप
1: जी,
0: कि मुझे इतने आसन करना है, इतने प्राणायाम करना है, इतने एक्सरसाइजेस करना है, इतना पसीना मुझे बहाना है
1: जी।
0: वर्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस हैं
1: जी,
0: है ना, फ्लोर एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें होती हैं
1: जी।
0: यदि योग नहीं बनता तो आप दंडवत कर कुछ भी कर लीजिए आप
1: जी,
0: लेकिन आपको घंटे अपने आप को देना है।
1: क्या बात।
0: उस एक घंटे के माध्यम से जो स्वेटिंग आपको होगी, जो ज्वाइंट्स आपके खुलेंगे, जो पेट आपका साफ होगा, उससे आपकी पूरी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और मानसिक तनाव में कमी आपको आएगी। देखिए डायबिटीज का सिर्फ एक मात्र कारण है, वह है हाइपर। जितना मानसिक तनाव आपका, हाइपर स्ट्रेस आपका बढ़ेगा
1: जी,
0: तो शुगर

0: इसका दोषी जीन्स भी है, ऐसी बात नहीं है, जेनेटिक भी है ये जी, है ना। यदि पिताजी को है तो आपको आने की संभावना है जी, माँ को है तो आपको आने की संभावना है जी, दादा को है तब भी आपको आ सकती है
1: जी।
0: ये जीन्स डिजीज भी कहलाती है ये
1: जी।
0: लेकिन उसको भी आप

0: उसी के माध्यम से आपकी डिजीज डिसाइड होती है। तो पहली बात, लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म यानी खत्म करने के लिए अपने को हम लोग सही जीवन शैली, पहली बात नियमितता जीवन में, जितने नियमित आप होंगे अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे आप। पहली बात, नियमित समय पर उठना, एक्सरसाइजेस करना, सुबह उठते साथ ही कम से कम आपको 2 ग्लास पानी पीना पेट साफ करने के लिए। जितना कचरा पेट का आपका साफ होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। 2 ग्लास पानी में कुनकुना पानी करिए, उसमें नींबू डालिए आप। नींबू डालने के बाद आपका पेट बढ़िया साफ आपका होगा, है ना। दूसरी बात क्या है, रोज 1 लहसुन खाइए। लहसुन रक्तचाप को सामान्य करता है।
1: कच्चा
0: लहसुन खाइए, उसको कुटक जाइए आप और पानी ऊपर से पानी पी लीजिए आप। तो पहली बात क्या है कि पेट की तमाम गैस कचरा

0: नाश्ते में आपके स्प्राउटेड बीन्स
1: जी,
0: अंकुर दाने
1: जी,
0: विटामिन बी का भंडार है
1: जी,
0: अंकुर दाने आपको रोज खाना है
1: जी,
0: कभी टमाटर खाना है
1: जी,
0: कभी चुकंदर खाना है
1: जी,
0: कभी आपका शलजम कभी खाना है, कभी आपको ककड़ी खाना है
1: जी,
0: ऐसे चीज उसमें चेंज कर लीजिए आप
1: जी।
0: तो ये हाईली फाइबर्स डाइट आपके अंदर के तमाम आमाशय को और आंतों को साफ करेंगे।
1: क्या बात है,
0: जितनी क्लीनिंग आपकी होगी उतना ज्यादा शुगर लेवल आपका बैलेंस होगा
1: जी।
0: जो बच्चे की डाइट है
1: जी,
0: वह डाइट मधुमेह की डाइट होना चाहिए
1: जी।
0: बच्चा हर बार बार खाता रहता है
1: जी,
0: तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा खाता है
1: जी,
0: बच्चा ठूस कभी नहीं खाता है
1: जी जी,
0: है ना, हम लोग पेट भर के खाते हैं, बच्चा नहीं खाता है
1: जी।
0: उसी प्रकार से जो डाइट बच्चे की डाइट आपकी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए आप,
1: यानी थोड़ी भूख

0: हर आसन में सांसों का गहरा महत्व है। जितनी गहरी सांसें लेके आप सूर्य नमस्कार करोगे
1: जी
0: उतना ज्यादा आपके बॉडी के सिस्टम, आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे।
1: हृदय रोग में भी सूर्य
0: बिल्कुल
1: नमस्कार
0: बिल्कुल सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार से मल्टीपल ऑर्गेन को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जितने हमारे पेनक्रिया है
1: जी,
0: हार्ट है
1: जी,
0: डायफ्राम मसल है
1: जी,
0: किडनी है
1: जी,
0: स्प्लिन है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, गॉटनेस ग्लैंड हमारी है, हमारे थायराइड है, हमारे लंग है, इन सभी को ये इसके हार्मोन्स को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जो भी इसमें केमिकल्स पैदा होते हैं उस केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार क्रिया बहुत इफेक्टिव है
1: जी।
0: दूसरी बात, हमारे आसनों में अर्धमच्छिंद्रासन
1: जी
0: बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: पश्चिमोत्तनासन
1: जी,
0: भुजंगासन की क्रिया बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: आपान सिद्धि क्रिया, गहरी सांस लेना, गहरी सांस को बाहर निकाल कर पेट को अंदर बाहर खींचना
1: जी।
0: जितना पेट को अंदर खींचोगे आपके मल्टीपल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपके, कचरा बाहर आपका निकलता है
1: जी,
0: निफ्रॉन्स आपके क्लीन साफ होते हैं, किडनी आपकी साफ होती है
1: जी,
0: तो किडनी रोग से बचेंगे आप
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं
1: जी,
0: देखिए क्या वैक्यूम थेरेपी है पूरी है ये
1: जी।
0: श्वासों का आपकी मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
0: यदि जब वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं
1: जी,
0: उसी वैक्यूम के द्वारा हम प्रसाद होती है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: जब तक चक्रवात
1: जी
0: और एंटी साइक्लोन साइक्लोन नहीं होगा
1: जी,
0: तब तक बरसात नहीं हो पाएगी
1: जी।
0: उसी प्रकार से जितना आप गहरी सांस को लेकर गहरी सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचते हैं
1: जी,
0: तो जो पेट में वैक्यूम तैयार होता है, उस वैक्यूम तैयार होने से आपका पेट कचरा बाहर निकलता है पहली बात, और ज्यादा सांस ले पाते तो क्लीनिंग बहुत आपकी फास्ट होती है। उस क्लीनिंग की वजह से पैनक्रिया इंसुलिन फेंकना शुरू कर देती है
1: जी,
0: दबाव पड़ता है
1: जी,
0: लीवर बाइल छोड़ना शुरू कर देता है, स्टमक एसिड छोड़ना शुरू कर देता है
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने हमारे अंदर के ऑर्गन अपने हार्मोन्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छी बात
0: है ना। तो इसलिए आसन की क्रियाएं आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं
1: जी।
0: उसके बाद गहरी प्राणायाम कर लीजिए आप
1: जी।
0: प्राणायाम में चंद्रभस्त्रिका है
1: जी,
0: सूर्यभस्त्रिका प्राणायाम है
1: जी,
0: नाड़ी शोधन की क्रियाएं हैं
1: जी,
0: है ना, कपालभाति की क्रियाएं हैं
1: जी,
0: उसके बाद आपका भस्त्रिका प्राणायाम है
1: जी,
0: उज्जायी प्राणायाम
1: जी,
0: बहुत एक सीरीज है
1: जी।
0: यदि एक घंटे आपने अपने आप को दिया
1: जी,
0: तो ना ही आप हृदय रोगी हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही मधुमेह के मरीज हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही रक्तचाप आपको चुप पाएगा
1: जी,
0: निम्न हो पाएगा
1: जी।

0: कम से कम आपको 20 मिनट प्राणायाम करना है।
1: क्या बात।
0: और प्राणायाम करने के बाद आपको 10 मिनट का ध्यान करना है।
1: 10 मिनट ध्यान करना।
0: ध्यान करिए और ध्यान में जितना अपने आप वैक्यूम कर सकते हैं आप
1: जी,
0: है ना, थॉट्स आते हैं आने दीजिए, आते जाने दीजिए और ब्रेन को मैसेज कन्वे करिए आप
1: जी।
0: देखिए दुनिया में सबसे जो आपका ओबीडिएंट है
1: जी,
0: आगे करेक्ट ब्रेन आपका है
1: जी,
0: आपका ब्रेन हर बात को मानता है
1: जी।
0: हमने दुनिया से दोस्ती की है
1: जी,
0: हमने कभी ब्रेन से दोस्ती नहीं करी है।
1: क्या बात
0: है ना। तो पहले योग सिखाता है कि अपने आप से फ्रेंडशिप करिए,
1: क्या
0: अपनी दोस्ती करिए
1: जी,
0: कहो मेरे हृदय तुम्हारे क्या हाल है, हमने कभी नहीं पूछा।
1: जो ध्यान की बात आपने की तिवारी जी, इसमें हमारे श्रोताओं को बताएं इसकी क्या क्रियाविधि होना चाहिए।
0: देखिए शरीर के विश्राम का नाम ध्यान है
1: जी,
0: नहीं शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: और दिमाग के विश्राम का नाम ध्यान है।
1: ध्यान
0: यदि शरीर विश्राम को चला गया
1: जी,
0: तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि दिमाग विश्राम को चला ही जाए।
1: क्या बात।
0: लेकिन जब जब दिमाग विश्राम को जाता है
1: जी,
0: शरीर को विश्राम को जाना ही पड़ता है
1: जी,
0: इसकी परिभाषा है
1: जी।
0: तो ध्यान का सबसे बड़ा जो केंद्र है हमारी सांस है
1: जी,
0: मस्तिष्क और शरीर के बीच का सेतु हमारी सांस है।
1: क्या
0: यदि आपने मन को सांस पर केंद्रित कर दिया तो धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप सूक्ष्म हो जाएगी।
1: क्या बात।
0: माइक्रो हो जाएगी
1: जी।
0: और वह माइक्रो ब्रीथ जो है आपके ब्रेन के तमाम कोशिकाओं को
1: जी
0: चार्ज कर देगी
1: जी। और आसन कौन सी पे रहना चाहिए अगर।
0: हाँ सुनिए, ध्यान करने के लिए सबसे बढ़िया पद्मासन।
1: क्या बात।
0: इसको हम कमलासन कहते हैं
1: जी,
0: कमलासन
1: जी
0: या पद्मासन
1: जी
0: या सुख आसन
1: जी,
0: है ना, ये आप चौकड़ी मार के बैठ जाइए
1: जी।
0: नहीं बनता है कोई बात नहीं है
1: जी,
0: आप चेयर में बैठ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए
1: जी,
0: उसे बैठ कर सकते हैं आप
1: जी।
0: आपकी आंख बंद होना चाहिए, पीठ सीधे होना चाहिए
1: जी।
0: और आंख बंद करने के बाद में सारे आसन करने के बाद जब आप प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद फिर ध्यान में जाइए
1: जी,
0: तो आपके अंदर डिफरेंट एक ऊर्जा होगी।
1: क्या।
0: और उस दौरान शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है
1: जी,
0: उस हलचल को आप महसूस करिए, एनर्जी लेवल कहाँ जा रहा है आपका, स्पाइन को देखिए अपने आप।
1: आपने मधुमेह के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने ध्यान के बारे में बताया। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं ऐसे हमारे श्रोता, उनके लिए कौन कौन सा प्राणायाम आप उचित समझते हैं।
0: हृदय रोग के लिए सबसे बढ़िया है अपान सिद्धि क्रिया।
1: अपान सिद्धि क्रिया।
0: अपान सिद्धि क्रिया
1: जी।
0: आप पीठ के बल लेट जाएं
1: जी,
0: पीठ के बल लेट कर गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें 10 बार
1: जी।
0: और आखिरी में जो पूरी सांस फूंक मारते हुए मुख से बाहर निकाल कर
1: जी,
0: पेट की मसल को कस के अंदर खींचें
1: और
0: बाहर छोड़ें, अंदर खींचें बाहर छोड़ें, अंदर खींचें बाहर छोड़ें, तो पहली बात जो बढ़ा हुआ पेट हमारा है वो कम होगा
1: जी।
0: जब बढ़ा हुआ पेट कम होगा तो हृदय पे लोड कम आएगा।
1: क्या।
0: जब हृदय पे लोड कम आएगा तो हृदय की लाइफ बढ़ जाती है। हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है कि यदि सीना आपका छोटा है और पेट आपका बड़ा है, तो जब भी आप सोने जाते हैं तो पेट का भार सीने की तरफ आता है, हृदय की तरफ आता है, तो हृदय काम करने की क्षमता कम हो जाती है
1: जी।
0: और यदि आपका पेट कम हो जाता है
1: जी,
0: तो पेट कम होने की वजह से हृदय तरीके से काम कर पाता है।
1: और प्राणायाम में क्या बताएं।
0: प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट है।
1: नाड़ी शोधन,
0: श्वास को लेना है
1: हाँ,
0: श्वास को रोकना है
1: हाँ,
0: सांस को छोड़ना है।
1: क्या।
0: लेफ्ट इन एंड होल्ड, राइट आउट
1: हाँ,
0: राइट इन एंड होल्ड, लेफ्ट आउट
1: हाँ,
0: है ना। इसकी 4 16 8 5 20 10 यानी 4 सेकंड सांस को लेना है, 16 सेकंड सांस को रोकना है, 8 सेकंड सांस को छोड़ना है
1: जी।
0: लेफ्ट इन होल्ड, राइट आउट
1: जी,
0: राइट इन होल्ड, लेफ्ट आउट
1: जी।
0: इस क्रिया को आप रोज 10 बार करिए
1: जी,
0: स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए
1: जी।
0: हृदय रोग से बचने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है ये
1: जी। तिवारी जी, समय की सीमा देखते हुए फिलहाल तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपने आज यहाँ पर आके मधुमेह और हृदय रोग से संबंधित दिनचर्या कैसी हो, किस तरीके की एक्सरसाइज और साथ में प्राणायाम इत्यादि किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा राहत और बचाव भी हो सकता है, विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को बताया। फिर कभी मौका मिला तो किसी और विषय पे आपसे बातचीत करेंगे
0: जी।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: बहनों, अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी, विषय था मधुमेह, हृदय रोग और योग। विषय विशेषज्ञ थे योगाचार्य अवनीश तिवारी और इनसे बातचीत की थी डॉक्टर बैजनाथ।

और बहनों, अब हम फिर से वापस आते हैं अपनी बातचीत पर और अब हम बात करेंगे अपने देश के युवा वर्ग की और उनके लिए एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत युवा वर्ग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, निर्माण कार्य, ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर इन युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही नहीं, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और उनकी रुचि के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना भी है। तो बहनों, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी पहचान में ऐसे युवा हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं, तो उन्हें आप इस योजना के विषय में जरूर बताएं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से वे न केवल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपना खुद का उद्यम भी आरंभ कर सकते हैं। ये तो निश्चित है बहनों कि जब युवा वर्ग कुशल और आत्मनिर्भर बनेगा, तभी देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस योजना का लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश की प्रगति में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। बरखा की बूंदे गर्मी की तपिश कम करने को आतुर हैं, तो चलें हम भी प्रसन्न मन से स्वागत करें बरखा की बूंदों का। प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाकी बातें आपसे होंगी अगले कार्यक्रम में। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है। मुरारजी देसाई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं पहला।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां आप सुनेंगे नंद कुमार जैन द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर के

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद इरफान की आवाज में फिल्म विलन से।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है

0: अमित त्रिवेदी का संगीत अन्विता दत्त के लिखे बोल नन्नी श्रीकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
7: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
8: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला गीत हम कौन सा सुनने वाले हैं और उसके लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उदित नारायण की आवाज़ में, साथ ही कविता कृष्णमूर्ति, हम गीत सुनेंगे फिल्म हद कर दिया आपने से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे, ग्राम छेंगा और देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वन्ना वाघे, भूपेंद्र वाघे, जवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे की तरफ से। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये।

फिल्म हद कर दी आपने से गीत सुना आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राशपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का। पटेल नगर मरनोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आरडी बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधे श्याम चावला की ओर से। इसके अलावा यादव मोहल्ला सनावन मध्य प्रदेश से लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की तरफ से। प्रियंका पंचौलिया, संजय पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने हमें लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शंकर जयकिशन का संगीत नीरज के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आपकी फरमाइश का, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगले गीत को सुनने का, जो हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ से, जो है पंजाब में, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म पाकीज़ा से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कैफ़ी आज़मी के लिखे बोल। लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और आपकी फरमाइश पर ही अगला गीत आपको सुनवाएंगे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें लिखा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म।

0: ए आर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म ताल से, और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपने पत्र भेजते रहें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि यह दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशकजन के लिए आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का आज लोकार्पण किया। और राज्य में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब हमारे युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि मिश्रा
1: और मैं सनाया नायक।
0: हम आप सभी का युवाओं को ऊर्जावान बनाने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ई वेस्ट दिन प्रतिदिन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और हम इससे कैसे उचित तरह से निपट सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी के साथ एक भेंट वार्ता से जानेंगे युवाओं के साथ हो रहे अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में।
1: साथ ही मैं जानेंगे कि आपके और हमारे यानी युवाओं के समाज के प्रति क्या दायित्व है।
0: और हाँ, हमारे पास आपके लिए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी हैं। तो चलिए आज का हमारा संगीतमय सफर शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था।
0: दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं आज का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म धड़क 2 से। गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: दोस्तों, आज के दौर का एक महत्वपूर्ण एवं चिंताजनक पहलू है टेक अपग्रेड्स के प्रति हमारी अनियंत्रित ऑब्सेशन। फिर चाहे वह हर आईफोन का नया मॉडल हो या फिर अच्छे खासे वायर्ड ईयरफोन्स की जगह पहले नेक बैंड और फिर ट्रेंडी ईयरपॉड्स लेना, अच्छी तरह काम कर रहे लैपटॉप को उसके स्लीकर वर्जन से रिप्लेस करने की चाहत हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है और नतीजा हमें पता भी नहीं चलता और हम ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक विशाल पहाड़ पैदा कर चुके होते हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट का मतलब है वह सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका उपयोगी जीवन खत्म हो चुका है। इसमें पुराने फोन्स और टूटे कंप्यूटर्स के पार्ट्स से लेकर हमारे इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज और पुराने हो चुके घरेलू उपकरण सब कुछ शामिल है। हर साल बाजार में नए मॉडल आ जाते हैं, इसलिए पुराने उपकरणों को जल्द ही बेकार मान लिया जाता है और अक्सर वे लैंडफिल्स में चले जाते हैं।
0: दोस्तों, ई वेस्ट की समस्या इसकी मात्रा से कहीं और बड़ी है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अनुचित तरह से निपटान किया जाता है तो यह पदार्थ मिट्टी और ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए ही गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ई वेस्ट को जलाने से जहरीला धुआं निकलता है और इससे रेस्पिरेटरी समस्याएं भी पैदा होती हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट पर्यावरणीय समस्या पैदा कर सकता है, परंतु इसमें मौजूद कीमती धातुओं का पुनः उपयोग एक आर्थिक अवसर भी प्रदान कर सकता है, इसलिए ई वेस्ट का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म ऊंचाई से यह गीत, जिसे गाया है अमित।

0: आइए दोस्तों, जानते हैं युवाओं के साथ होने वाले अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में इस भेंट वार्ता द्वारा।
1: विशेषज्ञ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी। इनसे बातचीत

0: श्रोताओं, समय समय पर हम अपनी भेंटवार्ताओं के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं और ऐसे ही एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून। और इस विषय पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अभिजीत अवस्थी जी को, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हैं। अवस्थी जी, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ आकर आप लोगों के साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूंगा, इसके इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम की अगर हम बात करें तो जे एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान है। आपके विचार से यह बदलाव कितना प्रभावी रहा है और क्या इससे अपराधों में कमी आई है?
1: देखिए, यह प्रावधान निर्भया कांड के बाद जनभावना और गंभीर अपराधों को की रोकथाम की दृष्टि से लाया गया था
0: जी।
1: किसी भी इस तरह के प्रावधानों का जो पर्पज़ होता है, जो कारण होता है, वो रहता है कि लोगों के अंदर एक डर लाना कि अगर वह इस तरीके के अपराधों में संलिप्त होंगे
0: जी
1: तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी
0: जी।
1: जहाँ तक यह इसका कितना प्रभाव रहा है, इसको देखने के लिए हमें एक्चुअली केस टू केस बेसिस पे मूल्यांकन करना होगा
0: जी।
1: परंतु ये जरूर हुआ है कि लोगों के अंदर जो है ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होने के कारण, और एक चूंकि ये पूरा प्रकरण ही जनभावना के आधार पे हुआ था जो बदलाव था
0: जी,
1: इस कारण से लोगों के अंदर अब ये जागरूकता आ गई है कि अगर वो इस तरीके के किसी कार्य में संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
0: जी। जी, अब अवस्थी जी, अगर हम बात करें भारतीय न्यायिक संहिता की, तो भारतीय न्यायिक संहिता में पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस भी बोलते हैं, का विकल्प दिया गया है। तो युवाओं को अपराधी बनने से रोकने में ये कदम कितना मददगार साबित हो रहा है आपकी नज़र में?
1: यह एक प्रगतिशील और मेरे हिसाब से स्वागत योग्य कदम है
0: जी।
1: छोटे अपराधों में जो पहली बार युवा जिनको जेल जाना पड़ता है
0: जी,
1: उन्हें समाज से जोड़े रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें जेल में हार्डकोर अपराधियों के संपर्क में आने से बचाएं
0: जी।
1: और इससे होगा क्या कि जो उनमें सुधार की संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी
0: जी,
1: और इसके साथ साथ जो एक अपराधी का स्थायी ठप्पा लग जाता है वो भी नहीं होगा। परंतु ये आवश्यक है कि उनके ऊपर लगातार निगरानी रखना भी आवश्यक रहेगी, बट मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है
0: जी। युवाओं से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आजकल देखा जाता है कि युवाओं में बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने की चाहत रहती है, जैसे हम एक तरीके से फास्ट मनी कल्चर बोलते हैं, ये बहुत बढ़ गई है। तो ये मानसिकता उन्हें साइबर फ्रॉड या संगठित अपराधों की तरफ कैसे धकेल रही है?
1: देखिए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लगातार जो चकाचौंध है, और मोस्टली सोशल मीडिया पे लोग जो उनके जो मूल रूप से वो हैं वो ना दर्शाते हुए वो जो लोगों में एक ऐसा भावना, एक ऐसी इंप्रेशन लाना चाहते हैं कि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं या वो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। इसके कारण ये होता है कि जो युवा जो दूसरे उनके साथ वाले हैं उनके ऊपर एक सफलता का दबाव सा महसूस करते हैं, इस कारण से वो लगातार इस तरीके के अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं
0: जी।
1: अब इसमें इसका जो आंसर है वो तो सिंप्लिसिटर यही रहेगा कि उन्हें ऐसे स्कीमों से बचना चाहिए, साथ में उनको ये जानना चाहिए कि उनको स्वयं अपना किस तरीके से वो अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी करके
0: जी
1: किस तरीके से वो प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी जो ये जो उनकी ये कहना चाहिए स्किल है उसका उपयोग कर सकते हैं अच्छी अच्छे कार्यों के लिए
0: जी। जी, अवस्थी जी, अगर हम बात करें पीयर प्रेशर या दोस्तों का दबाव और पारिवारिक माहौल किसी युवा के अपराधी बनने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, यदि परिवार में संवाद की कमी है तो इसके क्या परिणाम होते हैं?
1: देखिए, मेरे हिसाब से तो इनकी भूमिका निर्णायक है
0: जी।
1: किशोर अवस्था में चूंकि व्यक्ति जो रहता है वो लगातार अपनी पहचान बनाना चाहता है
0: जी,
1: वो अपने साथ वालों में अपनी स्वीकृति चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई लोग उसे सफल माने, तो इसके चलते जो है वो कई बार ऐसा हुआ है कि आप गलत संगत की ओर ले जाते हैं, चले जाते हैं, और अगर परिवार में संवाद की कमी होती है तो फिर लोग बाहर जो गलत लोगों के संगत में आके समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि भाई संवाद परिवार में लगातार होता रहे, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए कि

0: का महत्व बहुत अधिक है,
1: जी
0: और जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती है, आप इस तरह के किसी भी अगर आप कृत्य में लगते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में डिफिकल्टी हो सकती है।
1: जी अवस्थी जी, आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया या OTT का बहुत चलन है, तो सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली हिंसा या अश्लीलता युवाओं के व्यवहार को किस हद तक आक्रामक बना रही है? क्या इस पर किसी तरीके कानूनी सेंसरशिप की आवश्यकता है क्या?
0: देखिए, लगातार हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री के संपर्क में रहने से संवेदनहीनता तो बढ़ती है
1: जी,
0: इसको हम नकार नहीं सकते, और यह चिंता भी वास्तविक है इस कारण से। परंतु मेरे मत में पूर्ण कानूनी सेंसरशिप उसका जवाब नहीं है
1: जी,
0: बल्कि लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में साक्षरता लाना आवश्यक है, उसको एक शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए कि जहाँ पर डिजिटल मीडिया का उपयोग या फिर OTT का उपयोग किस अनुरूप होना चाहिए, इसकी जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि सेंसरशिप हर चीज़ को रोक देना उसका जवाब नहीं होता
1: जी,
0: बल्कि यह है कि उसके बारे में अवगत कराना ज़्यादा मेरे हिसाब से कारगर होगा।
1: जी, आजकल देखा जाता है कि साइबर क्राइम में पकड़े जाने वाले अधिकांश आरोपी जो हैं वो 18 से 25 वर्ष के युवा होते हैं। इस तकनीकी युग में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल को कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आपके इस पर क्या विचार है?
0: देखिए, जब अधिकांश आरोपी तकनीक में दक्ष होते हैं तो उनके लिए जो पारंपरिक पुलिसिंग के जो तरीके हैं वो नाकाफ़ी हो जाते हैं
1: जी,
0: अतः ये तो ऑफकोर्स आवश्यक है कि एक हमारे यहाँ ऑलरेडी एक समर्पित साइबर सेल का गठन हो चुका है, थाने हैं, और आप वहाँ पर जो है वो आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण भी उपलब्ध हैं
1: जी,
0: और इसमें जो लगातार जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, और साथ में उनको लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनकी साझेदारी की जा रही है। और अब इससे ऑफकोर्स ये ज़रूर होता है कि जो पुलिस बल है उसको निरंतर अपग्रेड करना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता हो गई है
1: जी।
0: तो मेरी नज़र में जो अभी हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी हैं, और लगातार ऐसे क्राइम्स से उनको रोकने के लिए हमने जागरूकता के अभियान भी लाए गए हैं, और साथ में हमारे पास तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे ऐसे अपराधियों को जल्दी और तुरंत पकड़ा जा सकता है।
1: जी, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की दोबारा, तो सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और युवाओं द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली अभद्र टिप्पणियाँ, जैसे हम हेट स्पीच या स्टॉकिंग बोलते हैं, के बीच की कानूनी सीमा बहुत धुंधली है। कानून की नज़र में सीमा को युवाओं के लिए कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है?
0: देखिए, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बनाम ऑनलाइन अभद्रता की सीमा
1: जी,
0: ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके लिए ये कहना आवश्यक होगा कि भाई हमें इरादा और नुकसान
1: जी,
0: इन दो शब्दों का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा
1: जी।
0: कोई भी स्वस्थ आलोचना या असहमति
1: जी
0: स्वतंत्रता है
1: जी, जी,
0: पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाना, धमकाना या उनको स्टॉक करना वो गलत है। युवाओं के लिए इसे सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि तुम्हारी आज़ादी वहीं समाप्त होती है जहाँ से दूसरे का सम्मान या सुरक्षा खतरे में पड़ता है
1: जी, बिल्कुल।
0: स्कूल कॉलेज स्तर पर डिजिटल आचार संहिता की शिक्षा मेरे मत में इस धुंधली रेखा को स्पष्ट करने में सबसे प्रभावी होगी
1: जी,
0: तो मेरी नज़र में ये आवश्यक है कि हम लगातार लोगों में ये जागरूकता, बच्चों में ये जागरूकता लेकर आएँ कि कहाँ तक उनकी जो आज़ादी है
1: जी,
0: वो आज़ादी उपलब्ध है, और किस लाइन को क्रॉस करने, किस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
1: चलते चलते अवस्थी जी, आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश, मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कि शिक्षा का कोई ऑल्टरनेट नहीं है
1: जी,
0: शिक्षा पूर्ण करना और लगातार यह संयम बरतना कि वो गलत संगत में ना आए, आसान पैसा कमा पाने की जो एक चाहत जो डेवलप हो रही है उसको कम करें
1: जी,
0: अपनी जो बेसिक शिक्षा है उसको पूर्ण करने के उपरांत ही
1: जी,
0: वो और लगातार ये आवश्यक है कि लगातार परिवार से अपने सारे जो परेशानियां हैं उसके बारे में लगातार वो डिस्कस करते रहें, उनसे आपस में चर्चा करते रहें
1: जी।
0: आई थिंक अगर पारिवारिक रूप से वो जुड़े रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे और अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे
1: जी,
0: तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी जो चुनौतियाँ हमने जिस पे चर्चा करी
1: जी,
0: उन चुनौतियों का बहुत फर्क पड़ेगा
1: जी। जी, अभिजीत अवस्थी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। हम आशा करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आपने बुलाया, थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी द्वारा। हमने इससे सीखा कि युवाओं के प्रति क्या अपराध हो रहे हैं और उनसे संबंधित क्या कानून है। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हिचकी से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: रश्मि, क्या तुमने सोचा है कि जब भी देश के भविष्य की बात होती है, तो सबसे पहले युवाओं का ही नाम क्यों लिया जाता है?
1: बिल्कुल सोचा है सनाया, क्योंकि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनमें ऊर्जा है, नए विचार हैं, बदलाव लाने का साहस है और समाज को नई दिशा देने की क्षमता भी है।
0: सही कहा, लेकिन केवल युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। एक सच्चे युवा की पहचान उसके सामाजिक दायित्वों से होती है। यदि हम केवल अपनी पढ़ाई, नौकरी और करियर तक ही सीमित रह जाएं, तो हाँ, हम सफल व्यक्ति तो जरूर बन सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक नहीं।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं आज का अगला गीत। इसे लिया गया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और गाया है विशाल ददलानी और सच।

0: दोस्तों अब वक्त है आज के दो प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है? इसका उत्तर है सैजिटेरियस ए।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था? कर्पूरी ठाकुर।
0: इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ। तब तक दयालु बने,
1: जिज्ञासु बने
0: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें। नमस्कार।

0: ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। अपने

एक चेहरा, एक एहसास गुलाबी सा, एक महक, एक स्वर मीठा सा छूता है जिंदगी को, और इस लुका छिपी में दिल गुनगुनाता है अपने एहसास। दिल कभी रुकता है तो कभी चलता है, कभी सुनता कभी कहता, तो कभी खामोशी में गुम हो जाता है।

खूबसूरत एहसासों की लुका छिपी जिंदगी को कितने रंग दे जाती है, कितने गीत फिजाओं में तैरने लगते हैं और दिल चल पड़ता है उनके पीछे गाते हुए, गुनगुनाते हुए।

श्रोताओं, जीवन लुका छिपी का ही खेल है। इसी लुका छिपी में कभी इंतजार है, बेकरारी है, प्यार है, और कभी खामोशी, उदासी और आंसू। यूं बादल भी हैं, पानी भी है, रोशनी भी है, और इन्हीं रंगों से जिंदगी मुकम्मल है।

एहसासों की ये लुका छिपी बेहद खूबसूरत है, इसी से जिंदगी के अलग अलग रंग हैं। कभी एक अपनापन बाहों में भर लेता है, तो कभी बेगानी सी निठुराई मीठे उलाहनों की वजह

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।
4: कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
5: आकाशवाणी

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचे गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे
1: की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।

जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन।

0: 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने।

ये लगता है कि यहाँ

0: फिल्म का नाम था हस्ती जख्म।
1: आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

अशोक भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये परिंदा फिल्म का गाना था। खुर्शीद हिल्लौरी के बोल थे और संगीत आर डी बर्मन का था। मोहम्मद रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का गाना कैफी आजमी के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

0: तराने नए पुराने।
1: आप सुन रहे थे तराने नए पुराने कार्यक्रम।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज के शेष और कल दिन भर के कार्यक्रमों का लिखा जोखा। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक एस एल कंडारा। आज आठवीं कड़ी सुनिए का इंद्रधनुष में इनसे मिले कार्यक्रम में फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रात 8 बजे हवा महल में झलकी लो कर लो दर्शन। लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का। आज मदन मोहन संगीतकार की याद का दिन है और उन पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिए छाया की। 10:30 पर ढलती जाए रात। कल दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता दें। सुबह 6:05 पर वंदन वार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, वायलिन का विहंगम संसार, संगीत सरिता कार्यक्रम में इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी कल सुबह और शाम 6:45 पर। कलाकार हैं वायलिन वादक एस एल कंडारा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे, 7:30 पर हम ही राही प्यार के। सुबह 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी। लेखक मिलिंद सबनी,

प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा संगीतकार इलियाराजा पर। ये कार्यक्रम आप रात 9:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष कड़ी 34। हेलो सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे होगा। इससे पहले 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। गीतों भरी कहानी श्रृंखला में कल सुनिएगा अरुण शेखर की कहानी उन दिनों की बात है। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे सुना जा सकता है। 5 बजे छाया गीत कार्यक्रम होगा 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7 बजे जयमाला सुनिएगा 7:05 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। बजट एक कमाऊ बीवी का, हवा महल के अंतर्गत रात 8 बजे ये नाटिका सुनवाई जाएगी। लेखक मनोहर वर्मा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे आपके लिए संगीतकार इलिया राजा पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये था लिखा जोखा विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया, कौन लाया। हम विविध भारती से बोल रही हैं, आइए सुने संध्या रंजन, बेला शेंडी की आवाज। फिल्म का नाम है जूधा अकबर, गीत जावेद अख्तर का, संगीत ए आर रहमान।

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए रिखव साथ तो होता ही सब राग में। सा के बाद रिखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो सिर स्वर है सावर का। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है। रिखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है
1: जी जी,
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफ़ी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद अमीर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। आहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल
0: है। बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

0: मन्नाडे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देशभर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मॉनसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था, जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203 करोड़ 56 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: नर सेवा ही नारायण सेवा ही, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203.56 करोड़ की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
0: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
4: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजातीय समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजातीय समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश EL का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में

अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बड़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फार्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केंद्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रूपये से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुन रहे बारे सभी भैया बहन काजी चंदा बहन और
1: रूपेश भैया की राम राम, राम।
0: और रूपेश भैया सुनाओ का हाल चाल है, मतलब दिनन बाद मिल रहे हो।
1: हाँ बहन बस सब बढ़िया है, और आज बड़े दिनों बाद हमारे भैया बहनों से भी मुलाकात हो रही है, तो आज अपन जी खेती से संबंधित चर्चा लेके उनके सामने आए।
0: और भैया देखो खेती बाड़ी अपन करते हैं, लेकिन अपन रूपेश भैया हम जी कहते हैं कि अगर सब में महत्वपूर्ण कछु होते हैं अपने जीवन में तो वो होते हैं अपनी निरोगी काया।
1: सही बात,
0: अगर अपन निरोग नहीं है, अगर ये कोनो रोग है परेशानी है तो कछु खेती बाड़ी हो चकर के कछु काम हो शादी ब्याह हो कछु घूमनो कछु में मन नहीं लगे कछु अच्छा नहीं लगे। तो पहले एक सपने महत्वपूर्ण है तो वो होते हैं अपनो स्वस्थ रहनो। और भैया देखो शासन की भी यही मंशा होते है कि अपन सबको जो स्वास्थ्य है वो अच्छो रहे।
1: सही बात,
0: और जय मारे

0: कई तरह की योजनाएं मिशन जो चलाए जाते हैं जिसे देश के सब नागरिक स्वस्थ रहें। तो देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में अगर अपन बात करें, सभी भैया बहनों ने जो के बारे में सुनो होएगो, तो जो भारत सरकार ने जब मिशन को शुभारंभ वर्ष 2013 में करो, और आपने सुनो होएगो कि अपना जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जाके अलावा अपनो जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, तो जी जाके उप मिशन है, यानी कि गाँव में रहे जन अपन लोग हैं चाहे शहर में रहे, स्वस्थ रहे वो तो हर एक जगह जरूरी है। और शासन जो ही चाहते हैं कि उनके उद्देश्य भी यही है जो मिशन चलावे के।
1: सही बात कह रही हैं बहन आप, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहन आज जो सरकार को स्वस्थ मिशन चलावे की जरूरत का पड़ी, जब बात भी अपने सोच में जरूरी है। तो बहन अपन देख रहे हैं कि हर समय अपने नई नई बीमारियां निकल के सामने आ रही हैं। अपन जो जी तो हम हर बात अपन भैया बहन से कहते रहते हैं कि खेती में कहीं ना कहीं अपन कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बासे भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात ये कि आज जो आज आधुनिकता की चकाचौंध है, जहाँ में हमारो खाओ पियो सब बिगड़ गए, तो जो जरूरी है कि सबसे पहले जो अपना मुख्य उद्देश्य होते हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना। बाजार से पैसे से अपन हर चीज खरीद सकते हैं, पर अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते,
0: बिल्कुल नहीं खरीद सकते।
1: बा को ध्यान तो अपने रखना पड़ेगा, संभल के अपने घर का सुपाच्य भोजन करना पड़ेगा, जमाई अपन अपना ध्यान रख पाएंगे। और जमाई अपन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं, जमाई जे सरकार का सफल
0: देखो स्वास्थ्य मिशन की एक बात और आपके बुलाने बताएं कि जो अपन और हैं सभी बान बिन को स्वास्थ्य खैर सुनिश्चित होना ही चाहिए, पर जब कोई जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, यानी मुख्य रूप से जो माँ है, बच्चा है, किशोर बच्चे होते हैं, बाल होते हैं, तो बिन को स्वास्थ्य सुनिश्चित करना का ऐसे कि देखो देश के जो भावी कर्णधार होते हैं बच्चा ही होते हैं, तो अगर माँ स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ बच्चा खिलाने जन्म देगी, फिर वो बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो तभी अपने जो देश के नागरिक हैं वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो बिन के लाने अपन संक्रामक रोगों से, गैर संक्रामक रोगों से बचाने हैं, जाके अलावा जो मातृ शिशु मृत्यु दर है वहाँ में कमी लाना है, और देखो महिलाओं में क्या होते हैं कई बार एनीमिया हो जाते हैं, तो बाकी रोकथाम करना है, तो यानी कि हर तरह के रोकथाम करने के लाने कुल मिला के इन सबको जन स्वास्थ्य है, देखभाल है। और हाँ भैया, जिनकी देखभाल पे व्यय जो व्यक्तिगत घरेलू जेब पे व्यय होते बाह में भी कटौती हुए, और कछु ऐसे जो रोग हैं जो आम तौर पे हो रहे हैं जिन पे नियंत्रण करना आज बहुत जरूरी है, जामे अपनी समझ लो कि पे देश की मुलक बड़ी संख्या जैसे प्रभावित होते और जैसे नुकसान होते हैं, जैसे क्षय रोग भव, टीबी रोग भव, तो जामे भी मृत्यु दर को घटाना बहुत जरूरी है। जाके अलावा जो माइक्रो फाइलेरिया है, मलेरिया है, जिन पर नियंत्रण करना, तो ये सब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर अपन ने जहाँ सब जो मिशन है जामे यार को शामिल करो गए है, और भारत सरकार के केंद्र प्रायोजित ये सब में बड़ी जो योजना है बिन में जो योजना है।
1: सही बात करें बहन आप, और अम्मी जी कहेंगे कि बहन अपन देखें पे तो पहले की महिलाएं को तेक उनको स्वास्थ्य को समस्या नहीं आती देखने में, चार चार पांच पांच बच्चे तक हो जाते थे, पर आज के समय में परिवर्तन इतना देखने में आ रहा है कि एक दो बच्चे में ही उन्हें बहुत समस्या देखने में खड़ी होते है। हर बार डॉक्टर को दिखाना, रेगुलर जांच कराना, फिर भी बाके बाद भी समस्याएं कई देखने में आते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि बीमारियां तो बाकी में कहीं ना कहीं अपन देखें तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिनों दिन कम हो जा रही है, जई वजह से आज अपने कई बीमारियां घेरे हुए हैं। और जो हमारे जो भैया हैं, बहनें हैं, कई जगह गांव में छोटी जगह भी देख रहे हैं अपन, नशे की गिरफ्त में जो आज जा रही है, तो नशा भी कहीं ना कहीं बीमारियां जो होते हैं वो नशा के कारण बहुत कई गुना तेजी से अपने शरीर में आ रहे हैं। समझ लो
0: कि अपना जो स्वास्थ्य अपन बिगड़ रहा, बाकी मुलक सारे कारण है। और देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो परिकल्पना है वो यही है कि हर कोई स्वस्थ रहे। जैसे जच्चा बच्चा की अपन ने बात करी, तो बामे अपने लापरवाही नहीं करने हैं, जो जैसे गर्भ धारण करते हैं स्त्री बासे उस टाइम से लेके बाको नियमित जाँच होनी चाहिए, तो मतलब बामे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो घर के जो और सदस्य हैं और उनके बिन के पति हैं, बिन की सास है, परिवार के और बड़े सदस्य हैं, बिन की भी जिम्मेदारी बनते हैं, तो यह बात पे ध्यान रखना चाहिए। संगे संगे भैया जब की जो सफलता है भविष्य को, स्वस्थ भारत तभी हो सकता है जब अपन सब मिलके भैया एक बात और जामे ध्यान रखनी है, जामे हम जोड़ेंगे भैया स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लाने, कैसे कि स्वच्छता सब में बड़ो कारण होते अपनी बीमारी को। तो अगर अपन अस्वच्छ रहेंगे, गंदगी से रहेंगे, तो भैया बीमारी तो जरूर होगी। तो जरूरी का है अगर अपन स्वच्छता से रहें, तो स्वच्छता को अगर अपन बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि साफ सफाई अपन ने घर में ही कर ली और या पे शरीर की ही कर ली, तो ना केवल अपने शरीर की, अपने घर की, अपने घर के बाहर को भी वातावरण जो है अपन ने

0: से साफ सुथरा रखना है।
1: बहन हम तो यही कहेंगे कि स्वच्छता में देखो जाए तो स्वच्छता ना कर पानो अपने आलस को दिखावो है, मतलब आलस जो है अपने अंदर भरा हुआ है, बाकी कारण कहीं ना कहीं हम स्वच्छता से परहेज कर रहते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने आलस को छोड़ें और जैसे अपन अपने घर को चमका के रखाते हैं, साफ सफाई रखाते हैं, वैसे ही अपने पूरे अपने मोहल्ला शहर अपने गांव को अपने घर की तरह समझें, तो निश्चित रूप से आप बाकी साफ सफाई कर पाएंगे, साफ रख पाएंगे। और कहीं ना कहीं आजकल अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे शहरों का नाम दिया जाता है और उनके हिसाब से उनका नंबर आउट है, ऐसे ही गाँव में भी गाँव का नंबर आता है और उनको पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर दिए जाते हैं स्वच्छता में। तो निश्चित रूप से अपन स्वच्छता अपनाएं तो अपने गाँव को, अपने शहर को और अपने देश को आगे कर पाएंगे।
0: बिल्कुल भैया, देखो अपने आसपास एक स्वच्छ वातावरण होता है, स्वच्छ पर्यावरण होता है, यानी कि अगर अपन ये कहें तो स्वच्छता से ही अपना स्वास्थ्य पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और जौन देश के जितेक नागरिक स्वस्थ होंगे वो बितेक ही उन्नति करत है,
1: सही
0: ये
1: बात
0: बात
1: है।
0: भी अपन ने भूलना नहीं है। और जैसे हमने कही कि गली मोहल्ला सबकी सफाई करना है, तो कई बार तो अपन ने कहा करत है कि लोगों ने घर की सफाई करी और कचरा कूड़ा ले जाके पड़ोसी के दे डाल दो। तो
1: सही बात
0: भैया
1: कह रहे
0: इस तरह
1: हैं
0: की भावना से, इस तरह से जैसे लड़ाई होते कछु होते है नहीं है,
1: ना।
0: तो अच्छो जो है कि सबको मिलजुल के अपन जिम्मेवारी समझ के जा काम करना है। कचरा कूड़ा निकलो और बाको एक तो सुरक्षित निपटान करना भी जरूरी
1: सही
0: है।
1: बात है।
0: सूखो कचरा अलग डालो, गीलो कचरा अलग। अब जैसे अपने जो रसोई घर को ऐसा कचरा होता है जो अपने अपने देखो जानवर को भी खिलावे लायक अगर है तो कछुआ में, तो वो अपन खिला दो, या अपन कछु खाद में भी उपयोग कर लेते हैं। आजकल तो देखो जैविक खाद बनाते हैं, वहां में भी अपनों जो न किचन को जो रसोई घर को जो ऐसा
1: हाँ बहन, कंपोस्ट
0: वेस्ट
1: खाद के बारे में अपन
0: वो होते
1: बता
0: हैं, वहां
1: रहे
0: पे
1: थे।
0: अपन कंपोस्ट खाद में भाई डाल सकते हैं। तो वहां से भी अपन करो हर तरह से, यानी कि देखो जे का है स्वच्छता की बात अपन कर रहे हैं तो जब भाई देश के सम्मान की भी बात जामे है। तो अब जैसे कौन हुआ, बाहर से लोग आते हैं, भाई दूसरे
1: हाँ हाँ
0: देश के
1: सही
0: लोग
1: बात
0: आते
1: है।
0: हैं तो देखते हैं, तो वो जे कहें कि कितने साफ सुथरा देश है, तो कितने अच्छे लगते हैं। अब जब जो कहें कि अरे जी इनके देश के नागरिक कैसे हैं, देखो कैसी गंदगी कर रहे हैं, होते थूक दो, होते होते कचरा डाल दो, तो जिन आदतन के लाने अपन ने बदलना है, सुधारना है, और अपने बच्चन में भी जाके संस्कार डालने हैं कि वे हमेशा साफ सफाई को ध्यान रखें।
1: और बहन बाहर के लोग जो आउट हैं तो वो पर्यटन को बढ़ावा मिलाते हैं और पर्यटन के बढ़ावा के संग संग हमारे रोजगार के साधन और रोजगार भी बढ़ाते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: जरूरी है
0: भैया,
1: कि अपन स्वच्छता
0: और
1: अपनाएं।
0: बिल्कुल भैया, और देखो मक्खी मच्छर नहीं पनपे। अब मक्खी मच्छर अगर पनपते हैं तो अपन जानते हैं कि कितने जैसे रोग होते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बात है।
0: अगर अपन साफ सफाई रखेंगे तो अपने आस पास भैया गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो कीटाणु ये सब मच्छर ये सब नहीं फैलेंगे। तो सीधी सी बात है भैया कि अगर अपन चाहते हैं कि अपनों परिवार, अपन अपना समाज, अपनो देश सब कछु अच्छो स्वस्थ रहे वो चाहते हैं, तो अपन सबन ने मिलके जाके लाने योगदान तीनों ही पड़ेगा और
1: सही
0: देनो ही
1: बात
0: चाहिए भैया। और देखो रुपेश भैया जय के संगे हो गई है कार्यक्रम चौपाल से चलबे की बेरा, तो ले लेते हैं भैया इनसे विदा। सभी भैया बहन का जय, चंदा बहन
1: और
0: और
1: रूपेश भैया की
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम,
0: जय
1: जय
0: जवान।
1: जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा है?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सभी डाले,
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं।

0: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। भैया बहनों, आप सबन की लाने चंदा बहन और
3: रूपेश भैया की राम राम, राम। तो बहन, अपन देखें कि अब खेती को समय चल रहा हो और एक तरह से देखो जाए तो अब खरीफ फसल को समय आवे बार बार समय चल रहा हो। तो भैया वैसे बोनी को समय है और बोनी के समय में अगर अपने जैसे पानी गिर गए और खेत में बतर आ गई है तो बिल्कुल आप बोनी कर सकते हैं। जैसे अपन जहाँ टाइम पे अपन खरीफ में फसलों में देखो जाए तो सोयाबीन है, उड़द है और मूंग है, तिल है, मूंगफली है आदि फसलन की अपन बुवाई कराते हैं। पर भैया बुवाई करते समय एक तो अपन को जो ही देखना है कि बढ़िया बतर आई हो जाए, भैया अपन को बुवाई करनी है और बुवाई के पहले अपन का जो बीज उपचारित करना है, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं। और बुवाई जो अपन कराते हैं तो पहले के जमाने में जो छिटक में बोनी कराते थे वैसो अपन का जो बिल्कुल नहीं करना है, बोनी अपन का जो दो पेटी वाली सीडल से ही करना है।
2: बिल्कुल भैया, आधुनिक तकनीकन को अपन ने अब इस्तेमाल करना ही चाहिए।
3: हाँ, और आधुनिकता जितने अपन अपनाएंगे खेती में निश्चित रूप से अपन उतने सफल होंगे और उतने अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और भैया जैसे कि बोनी में आप जानते हैं कि कतार से कतार की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये सब ध्यान रखना ही है। बाकी से भैया हम सब समझदार हैं ही। और भैया सब्जियों को टाइम भी है तो आप चाहे तो यहाँ पे भिंडी, लौकी, तुरई, ये सब सब्जियां भी लगा सकते हैं।
2: बिल्कुल भैया, देखो रूपेश भैया, अब खेती बाड़ी तो भैया करते हैं, मेहनत भी करते हैं, आपने बताई सब सावधानी भी रखते हैं, पर कई बार का होते थे सब अच्छे तरह से करवे के बाद भी अपने भैया के लाने मुलक तरह की परेशानी इनको या कह सकते हैं जोखिम का सामना अपनी खेती बाड़ी में करना पड़ता है।
3: और
2: जोखिम ऐसी होते भैया, जैसे मान लो प्राकृतिक आपदा है कौन है ना, ज्यादा पानी बरसो तो अतिवृष्टि भैया, अनावृष्टि भई, सूखा पड़ गओ या ओले पड़ कछु भी ऐसो भाव ओला की वजह से अपनी फसल अगर खराब भई तो अपने जो किसान भैया इतने जो पैसा लगाते हैं, इतने जो मेहनत कराते हैं वो कई बार खराब हो जाते
3: हैं। क्या मतलब आपको जो है खेती जुआ है?
2: हाँ, जोखिम तो वहाँ में होता है। तो अब जब उनमें जोखिम होते हैं तो अपने जो भैया है बा में भैया बेसुरक्षित कैसे रहे? तो बाके लाने देखो शासन द्वारा, ये सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है और जाको जे उद्देश्य है कि जो नपाए भैया है इनकी फसल जो है वह सुरक्षित करो जाए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जाके शुरुआत जनवरी 2016 में करी गई, जो केंद्र सरकार द्वारा फसल की सुरक्षा के लाने भैया एक बहुत ही अच्छी बीमा योजना है, जहाँ में अपनी फसल को जन बीमा होते, यानी कि अगर इनकी फसल आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप, यानी कोनो भी प्राकृतिक आपदा का नष्ट हो जाते तो सरकार ऐसे किसान भैया का जो उचित मुआवजा देते हैं, यानी जिसे अपने किसान भैया की नुकसान की भरपाई हो जाते
3: हैं। हम तो यही कहेंगे आप भैया से कि बीमा शब्द से अपने भैया पर अच्छी भली बात जानते हैं। बीमा चाहे अपने स्वास्थ्य को बीमा हो, जैसे कि अपनी गाड़ी को बीमा हो, जैसे जब जो बीमा का मतलब होता है कि कोनो जब परेशानी आ जाए या अपनी गाड़ी को कोनो दुर्घटना हो जाए या अपने स्वास्थ्य की कोनो परेशानी हो जाए तो अपने वो बीमा कहीं ना कहीं आड़े समय में अपने काम में आओ।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो ऐसे ही भैया हो कि सरकार ने जो फसल बीमा चलाई है
2: और तो समझ लो कि हर तरह की अनाज भाव, चाहे तिलहन भाव, चाहे सालाना व्यवसाय, बागवानी फसलें, सबके लाने जो बीमा होते हैं। और जामे भैया जो अपनो प्रीमियम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, मौसमिक दर के हिसाब से जैव खाद्यान्न तिलहन के लाने जो 2% को भी प्रीमियम है तो कम 5% को है, मतलब ज़्यादा जामे प्रीमियम भी नहीं देना पड़े, लेकिन जो निश्चित प्रीमियम होते हैं वो भैया इनके लाने देना पड़ता है और प्रीमियम की जो बाकी रकम होते हैं वो सरकार द्वारा दे जाते हैं।
3: तो बहनों, और जो प्रीमियम की राशि भैया के खाते से कटा है तो उनके लिए जरूरी है कि अपने खाते में जितने मतलब एक सब मतलब कम से कम बैलेंस भी जरूर रखें और खाता चालू होना चाहिए, जो भी बाकी प्रक्रिया होते खाते की DBT या KYC वो जरूर अपनी रखें।
2: तो भैया ना केवल आप और हैं जैसे फायदा उठाओ, बल्कि हम तो कहते हैं आसपास भी लोगों के लाने जाके बारे में जरूर बताओ। और अब तो देखो कितनी एक सुविधा है, अब तो ऑनलाइन भी जाके लाने आवेदन करो जा सकते हैं। सो भैया हम तो यही कहेंगे भैया जाको जरूर लाभ उठाएं, कैसे कि रूपेश भैया आत्मविश्वास से भरपूर हमारा अन्नदाता किसान अब फसलें हैं सुरक्षित और बिनके चेहरे पे होगी फिर मुस्कान।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने।
2: देखो जई के संगे अपन जा बात के लाने तेई रोकत है और देखो आज जो अन जे भेंट वार्ता लेके आए भए हैं जाको विषय है धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी प्रबंध, जी में अपन खा जानकारी दे रहे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा और जिनसे बता रहे भैया श्री SS चौधरी। सो चलो अपन जो सुनाते हैं और जो भैया के लाने में पुनः प्रसारित कर रहे हैं जिसे भी लाभ उठा सके, चलो सुनाते हैं।
4: किसान भाइयों, धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हमारे शिवपुरी जिले के कई विकास खंडों

0: में भी धान की खेती होती है। धान की खेती से अच्छी पैदावार के लिए यही वो उपयुक्त समय है जब हम उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव करके नर्सरी डालें। जब नर्सरी में स्वस्थ पौधे उगेगी, उनकी जब हम रोपाई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। तो धान फसल की सबसे पहले हम प्रजातियों के बारे में जानेंगे, फिर जो हम नर्सरी डालेंगे उन्नत नर्सरी वो कैसे डाली जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन कौन सी धान की उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे शिवपुरी जिले में अच्छी पैदावार दे सके।
1: देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जब हम खेती किसानी करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पहली शुरुआत हमारी होना चाहिए कि हम उन्नत किस्म का बीज लें, और ये जो नवीन किस्में आई हैं इनमें पुरानी किस्मों की तुलना में पैदावार देने की क्षमता भी अधिक है, और साथ में इनमें कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होता है। इनमें आनुवंशिकी के माध्यम से जो टूल्स हैं, जो तकनीक हैं, उनके माध्यम से जो बीमारी को रोकने वाले जीन्स हैं उनको इसमें डाल दिया गया है, ताकि इनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। अभी तक किसान भाई पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509 ये दो किस्में ऐसी हैं जो बतायत हमारे शिवपुरी जिले में किसानों के द्वारा लगाई जाती रही हैं।
0: जी।
1: इनके स्थान पर यदि 1509 की बात करें, जो कि जल्दी पकने वाली धान की किस्म है, जो 120 दिन में आ जाती है, और इस किस्म की जगह नई किस्म जो आई है वो है पूसा बासमती 1847। ये किस्म भी 120 दिन में आती है, लेकिन इसकी पैदावार देने की क्षमता 57 से लेकर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, और इसमें जो धान का झुलसा रोग और धान का बैक्टीरियल ब्लाइट जो बीमारी आती है वो इसमें नहीं आती है। इसी तरह पूसा बासमती 1121 की जगह पूसा बासमती 1885 ये नई किस्म है, जो 135-140 दिन में पकती है, और इसकी पैदावार देने की क्षमता 60 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इसमें भी जो जीन्स हैं उसकी वजह से हमारी इन किस्मों में इस किस्म में भी जो बीमारी आती है धान की झुलसा रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट वो इसमें नहीं आता है। तो इस प्रकार से एक और किस्म है पूसा बासमती 6 के स्थान पर जो विकसित की गई है, और वो किस्म है पूसा बासमती 1886। ये किस्म जो है थोड़ा सा और लेट पकती है, 145-150 दिन में जाती है, लेकिन इसकी पैदावार देने की क्षमता 65 से लेकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। तो ये नवीन किस्में आई हैं, मैं चाहूँगा किसान भाई इन किस्मों का बीज लें। इसके अलावा पूसा बासमती 1692-1718 ये भी किस्में हैं, जिनका बीज मिलता है तो ये भी नवीन किस्में हैं, इनका बीज किसान भाई को उपयोग करना चाहिए।
0: इस पद्धति से अच्छी पैदावार मिलती है।
1: ये जो पैदावार देने की जहाँ तक बात है, तो जो हमारी परंपरागत रोपण तकनीक है ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें धान को जो उसका शिशु अवस्था जो होती है बचपन में, नर्सरी में उसका हम अच्छे से प्रबंध कर लेते हैं। अच्छी पौध स्वस्थ पौध को तैयार करने के बाद खेत में ले जाते हैं, तो हमारी पैदावार अच्छी मिलती है।
0: जो आपने अभी प्रजातियाँ बताई हैं इनमें लगभग कितनी पैदावार मिल जाती है?
1: इन किस्मों की लगभग औसत देखा जाए तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है, यानी 12 क्विंटल एक बीघा पैदावार किसान ले सकता है।
0: यानी कि बीज का चुनाव अच्छा करें, सही समय पर इनकी हम नर्सरी बिल्कुल तैयार करें, सही समय पर रोपण करें वैज्ञानिक विधि से, और भी जितनी भी प्रबंधन की शस्य क्रियाएं सही समय पर यदि किसान भाई करते हैं तो जो पैदावार बताई है अपनी इतनी तक बड़ी ही आसानी से किसान भाई
1: ले सकता
0: है, मिल सकती है।
1: और मैं किसान भाइयों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूँगा कि नर्सरी कभी भी बड़े क्षेत्र में एक साथ न डालें, हम 2-3 स्टेज में नर्सरी डालें। कई बार क्या होता है कि पानी वर्षा लेट हो जाने से या पानी की उपलब्धता न होने से या श्रमिकों की उपलब्धता लगाते समय न मिलने से, ऐसी स्थिति में यदि आप एक बार में नर्सरी डाल देंगे, पूरा नर्सरी एक बार में बोलेंगे, तो पौध की उम्र जो है, जो निर्धारित उम्र है 21 लेकर 28 दिन की जो अवस्था है, उससे कहीं ज़्यादा पौध पुरानी हो जाती है। 45 दिन की पौध किसान जब लगाते हैं तो उसमें कम से बहुत कम फूटते हैं, पैदावार गिर जाती है। तो हमेशा स्टेगर्ड जिसको बोलते हैं, अलग अलग 5 दिन के अंतर पर नर्सरी बोएं, ताकि हमारे श्रमिकों की उपलब्धता और पानी इत्यादि की जो उपलब्धता है उसके अनुसार हमारे पास पौध रहे और हम उसमें फैल ना हो, मौसम के समय रहते हम अपनी अच्छे से रोपाई कर सकें।
0: तो अंतराल से नर्सरी डालें।
1: हाँ।
0: ताकि मौसम की स्थिति को समझते हुए अगर पौध हमारी सही अवस्था में है तो उसका रोपण हो जाएगा, अन्यथा जो हमारी दूसरी पौध है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं समय के अनुसार। एक साथ यदि हम सभी पौध तैयार कर लेते हैं और मौसम अनुकूल नहीं रहा तो फिर रोपाई किसी कारण से न होने की स्थिति में ये पौध हमारी ज्यादा दिन की हो जाएगी, फिर इसका रोपण
1: उम्र बढ़ने से पैदावार हमारी कम होती
0: है, और उससे पौध संख्या भी प्रभावित होगी, और उसका असर हमारी पैदावार पर पड़ेगा। अब बात आती है कि जो बीज है, बीज कहाँ से किसान भाइयों को लेना चाहिए?
1: बीज हमारे राज्य में जो राज्य बीज निगम है, या हमारे जो पूसा अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में वहाँ से, या जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से, या हमारे राजमाता विजयराज सिंधिया का जो बागवानी अनुसंधान केंद्र है धान का, वहाँ पर इनका जो प्रमाणित बीज है या इनका जो आधार बीज है वो हमें प्राप्त करना चाहिए किसानों को। और बीज लेने के बाद जो बोने का समय हमने बता दिया आपको, बोने के तरीके के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि नर्सरी जब बोते हैं किसान भाई तो उसमें कई तरीके से किसान अपनी सुविधा अनुसार कई विधियाँ इसमें प्रचलित हैं। जो सबसे अच्छी विधि वो ये है कि हम खेत को पहले अच्छी तरह तैयार करने के बाद 5 सेंटीमीटर तक पानी भर रहे हैं और पानी भरने के बाद उसमें हम मचौवा करते हैं कल्टीवेटर और पाटा के माध्यम से या फिर रोटावेटर एक साथ दोनों काम करता है तो उससे भी हम अच्छी पटलिंग कर सकते हैं। और बचाने के बाद जब हमारा मटमेला पानी होता है मिट्टी में, मतलब पानी मिट्टी जो है पानी में घुली हुई होती है, उस अवस्था में हमें उपचारित बीज धान का छिड़क देना चाहिए। जब वो बीज जब उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद खेत में से पानी जो है हम निकाल देंगे तो मिट्टी के साथ ही बीज नीचे बैठ जाता है और यह भी 2 से 3 दिन में अंकुरित होने के बाद आपको हरा खेत दिखाई देने लग शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे पौध बढ़ती है वैसे वैसे हम खेत में 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक पानी हम बढ़ाते जाते हैं और बाद में हम 4 सेंटीमीटर का पानी नर्सरी में मेंटेन करते हैं। बोने के पहले हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को बीज उपचार करना, और बीज का एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं सीड प्राइमिंग, यानी बीज को हम 48 घंटे तक पानी में पहले भिगोएं जिससे बीज में कुरे फूट जाएं, अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उस बीज को हम 48 घंटे बाद निकालने के बाद हम 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 10 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये दो दवाएं हमें 10 लीटर पानी में मिला करके 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त है, और बीज में ये मिला करके हम 24 से लेकर 36 घंटे तक टाट के बोरे में इसको ढक के रखें। फिर जब इस बीज को हम बने जाएंगे जहाँ हमने खेत तैयार किया है। एक और बात और ध्यान रखें, जब हम क्यारी विधि से यदि लगाना चाहते हैं पौध तो ऐसी स्थिति में 2 क्यारियों के बीच में हम 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली की व्यवस्था बस कर दें जो लगभग 25 सेंटीमीटर तक गहरी हो। तो इसमें क्या है, बीच क्यारी जो हमने बनाई है उसकी लंबाई तो आवश्यक खेत की लंबाई के अनुसार आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 100 मीटर या 1.5 मीटर से ज़्यादा न रखें। और बाद में इस पर हम 8 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर कतारों में हम धान के बीज की बुनाई करते हैं। तो इस प्रकार से बीज हमारा अच्छा अंकुरित होता है, अच्छी पौधों को मिलती है बाद में, इसका ध्यान रखें। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि नर्सरी में पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है। तो खेत की तैयारी के समय खेत में 12 से 15 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से लेकर 6 किलोग्राम म्यूरेट पोटास और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये चारों चीज़ें आपको आधार खाद के रूप में खेत की जब तैयारी करते हैं उस समय या मचौवा करते समय मिट्टी में अवश्य मिला दें, ताकि जब हम पौध लगाएंगे तो उनको अच्छा पोषण जो है जमीन से मिलता रहेगा और अच्छी पौध फसल को पोषण मिलने से बढ़वार अच्छी मिलेगी।
0: ये देखा जाता है कभी कभी नर्सरी में पौधे पीले पड़ने लगते हैं, तो इसके लिए कुछ
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताना चाह रहे थे कि नर्सरी के कई बार देखने में आता है कि पीलापन शुरुआत होती है। पीलापन दो तरह से आता है, एक पुरानी पत्तियाँ जो आधार से पीला होना शुरू होती हैं वो सिम्टम्स है कि हमारे खेत में नाइट्रोजन कमी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पौधों की पत्तियाँ ऊपर से पीला शुरू होता है जो बाद में पत्तियाँ पीले होने के बाद सफ़ेद पड़ने लगती हैं, सफ़ेद होने के बाद कत्थई भूरे रंग की होकर पौधे पत्तियाँ मरने लगती हैं। तो ये जो सिम्टम है जो ऊपर से पीला बनाता है वो धान में लोहे तत्व की कमी के कारण होता है, और जो नीचे से पत्तियाँ पीला होना शुरू होती हैं पुरानी पत्तियाँ वो नाइट्रोजन की कमी के कारण पीला होती हैं। यदि नीचे वाली पत्तियाँ पीला होना प्रारंभ हुई हैं तो आप यूरिया 25 ग्राम यूरिया 1 स्क्वायर मीटर में के हिसाब से आप भुड़काव करें, या अमोनियम सल्फेट मिलता है तो 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट 1 स्क्वायर मीटर में आप भुड़काव करेंगे तो ये आपका दूर हो जाएगा पीलापन जो पुरानी पत्तियों में आ रहा है। लोहे की कमी जहाँ पर है वहाँ मैं एडवाइस करूँगा, किसानों को बताना चाहूँगा कि खेत में पानी कमी ना होने दें, पानी भर कर रखें, तो यही एक अपने आप में एक ऐसा उपाय है जिसमें आप लोहे की कमी को दूर कर सकते हैं, सूखने मत दें खेत को। और फिर भी यदि कमी के लक्षण आपको ऊपर की पत्तियों में दिख रहे हैं तो फेरस सल्फेट जो आता है उसका हमें 0.5% यानी 1 लीटर पानी में आपको 0.05% मतलब 0.5 आधा ग्राम जो है फेरस सल्फेट पानी में घोलकर हम फसल पर छिड़ देंगे तो हमें आयरन की कमी खेत से दूर हो जाएगी।
0: जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि नर्सरी में कभी कभी कुछ कीड़े बीमारियों का प्रकोप आरंभ होता है,
1: कई बार पत्ती लपेटा कीड़े का प्रकोप होता है या पत्ती सिकुड़ने वाले रस चूसने वाले कीड़े भी खेत में दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लोरोपाइरीफास एक दवा है जिसे हमें उपयोग करना चाहिए। 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी मिला करके यदि हम खेत में छिड़काव कर देंगे तो ये कीड़े बीमारी समस्या नर्सरी खत्म हो जाती है। कई बार ये भी देखने में आता है कि खरपतवार को भी नर्सरी में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम बताना चाहेंगे कि एक तो धान दो दवाएं हैं, दो तरह की दवाएं होती हैं, एक वो दवा जब हम खेत में पौध बोया बीज हमने बोया ही है उस समय उपयोग करना है, यानी बचाव करने के बाद जैसे बीज बो दिया है अंकुरण से पहले उपयोग करने वाला शाकनाशी प्रेटलाक्लोर बाजार में उपलब्ध है, कई नाम से बाजार मिल जाता है। इस दवा को हम 750 ml दवा 1 हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। यदि यह दवा नहीं डाली है उस समय उस अवस्था में जब पौध हमारी 10-15 दिन की होती है और खेत में हमें खरपतवार के पौधे दिख रहे हैं तो बिसपायरीवेक सोडियम दवा आती है नोमिनो गोल्ड नाम से, इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। यह दवा 15 लीटर पानी में 22.5 ml दवा आपको बनाना होती है, तो इस प्रकार से यदि दवा का उपयोग कर देंगे तो खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे और जो क्लोरोपाइरीफास दवा बताइए उससे कीड़े बीमारी का भी खत्म हो जाता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए यदि 1 हेक्टेयर में हम धान रोपना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, ये अच्छा
0: तो नर्सरी कितने क्षेत्र में डालें?
1: इसका सीधा सा ये नियम है कि हम 1 हेक्टेयर में यदि धान की 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौध की हमें आवश्यकता है तो हमें 1/10 हिस्सा हमें नर्सरी के लिए रखना चाहिए और वो लगभग 1000 वर्ग मीटर आता है, यानी कि आधा बीघा क्षेत्र जो है हम 1 5 बीघा के लिए पौध देने के लिए पर्याप्त होता है।
0: कितने दिन की पौध

0: रोपनी के लायक हो जाती है।
1: हम बताना चाहेंगे ये बहुत ही अच्छा, इसको ध्यान देने वाली एक बात है जिसे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने देखा है किसान भाई पौध 35-40 दिन की, 45 दिन की होने के बाद भी लगाते हैं तो उसमें पौधों में फुटान कम होती है। तो यहाँ ध्यान रखें कि जब हमारी पौध 21 से 28 दिन की जो पौध है की उम्र है, इस अवस्था में ही हम इस पौध को निकाल कर खेत में लगाएं, और पौध को निकालने के बाद खेत की मेड़ पर एक दिन के लिए ना छोड़ें, बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप पौध निकालते जाएँ और रोपण करते जाएँ। बहुत से बहुत आधा एक घंटे का अंतर हो सकता है, लेकिन पौध निकाल जमीन से निकालने के बाद खेत में डाल देना, उसके बाद अगले दिन प्लांटिंग करना, ये गलत प्रक्रिया है। इसकी वजह से भी फसल में फुटान कम होता है। तो इन सब बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से धान की अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकेंगे।
0: जी, तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि शिवपुरी जिले के लिए धान की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियाँ हैं, और जो किसान भाई रोपा पद्धति से धान की खेती करना चाह रहे हैं तो रोपा के पहले जो हम नर्सरी डालेंगे, पौधशाला लगाएंगे, उसका तकनीकी विधि से कैसे प्रबंधन किया जाए, ये जानकारी सुनकर के किसान भाई ज़रूर इन वैज्ञानिक के बातों का ध्यान रखेंगे। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता जी को विषय है तो कि धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी प्रबंध, जहाँ मैं वार्ताकार रहते डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा और उनसे बातचीत कर रहे थे श्री SS चौधरी। तो भैया बहनों, डॉक्टर साहब ने धान की उन्नत प्रजातियां और बाकी नर्सरी प्रबंधन के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी बताई, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे भैया बहन
3: जरूर आएंगे। और रूपेश भैया अपन आगे और बता रहे हैं, पर पहले काय नहीं कछु भैया के लाने मनोरंजन कराओ जाए। सो देखो, आज हम जो ये लोकगीत लेके आए हुए हैं, जय गाए रही हैं माधुरी शर्मा से, चलो मिल

0: और देखो भैया, जो लोकगीत का जो गा रही हती माधुरी शर्मा और रूपेश भैया जो कितने एक नौ नौ सौ लोकगीत है,
1: भाई।
0: तो उम्मीद करते हैं भैया के लाने जरूर अच्छो लगो है ये। और देखो अब हम फिर बात वही करेंगे भैया खेती बाड़ी की, कैसे के देवो पर भैया किसान भैया हैं, वो खेती बाड़ी काम करते हैं।
1: सही है,
0: और खेती बाड़ी में काम तो ऐसे होते हैं वो खत्म ही नहीं हुए, कछु ना कछु तो देखो लगो ही रहते हैं।
1: सही बात है।
0: अब अपन जाते हैं जैसे बोनी की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे भैया कि अपन जो भी काम करें तो पर अगर प्राकृतिक तरीका अपनाए खेती बाड़ी में, तो जैसे भैया देखो एक तो अपनी भूमि सुरक्षित होते हैं और संगे संगे अपन स्वास्थ्य सुनिश्चित होते हैं, और जाके अलावा

0: या पैसा की भी अच्छी बचत होते हैं। तो प्राकृतिक खेती अपना वो हम तो कहते हैं हर तरह से लाभ को होते हैं।
1: प्राकृतिक खेती का मतलब सीधे ऐसे ही है कि जैसे हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं कि आप सीधे जो चीज़ें होती हैं वो थे, जैसे आप सब्जियां हैं या सलाद है या जो भी चीज़ें हैं, साबुत अनाज है, अंकुरित अनाज है, अपन उन्हें सीधे खाते हैं, ना कि उन्हें तला भुजा के पका के, तो निश्चित रूप से अपने शरीर के लाने में बहुत अच्छे फायदा करते हैं। तो वो भी एक प्रकृति के देना और प्राकृतिक तरीका है। ऐसे ही खेती में अगर अपन प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिला था, और खेती के लाने भी लाभ मिला था और स्वास्थ्य के लाने
0: और
1: भी लाभ
0: वैसे
1: मिला
0: भी रसायन मुक्त खेती
1: था।
0: करना तो आप देखो आज की हम कहते हैं आवश्यकता भी बन गई है।
1: हाँ मैम,
0: तो भैया देखो जय के संगे हो चली है अब चलवे की बेरा,
1: हाँ मैम,
0: तो हम जय भैया से कहेंगे कि भैया आप अपनों और अपने बच्चन को खूब,
1: बिल्कुल,
0: अपने पशुअन को भी
1: हाँ
0: स्वास्थ्य को बहुत ख्याल रखो,
1: हाँ
0: कैसे कि पहला सुख निरोगी काया होते जा बात के लाने पर भूलना चाहिए।
1: सही बात
0: और
1: है,
0: मौसम कोनो भी होए स्वस्थ रहनो और बामे अपन मौसम संबंधी कछु बातन को ध्यान रखना जरूरी होते हैं। और जय के संगे होगा टाइम तो ले लेते विदा
1: हाँ
0: सभी
1: मैम,
0: भैया बहन काजे चंदा बहनों,
1: रूपेश भैया की
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम,
0: जय
1: जय
0: जवान
1: जवान, जय
0: जय किसान।
1: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसान

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: सीधा जी, वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
1: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
3: क्यों,
1: क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
1: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
3: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे।
1: हाँ जी।
3: अच्छा, फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
1: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना,
3: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
1: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा,
1: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
1: भला हो वाहेगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाकू

0: नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
1: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
0: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी है? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
2: तो
0: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
0: एक अनऑथराइज्ड रेस्टोरेंट में आग लगने से वहाँ जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड।
1: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
0: अरे वहाँ भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदाजी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
2: लेकिन यही तो कहा जाता
0: है। अरे क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादें हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
1: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
0: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
1: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: पेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं पेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? घोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहाँ है तेरा रब बता दो, कहाँ? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
3: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूँ मैं नास्तिक हूँ। ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है तुमको दिख रहा है?
2: नहीं
0: दिख रहा है ना।
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
3: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं। तुम भी क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
1: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
3: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
2: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
1: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
0: भैया मुझे तो बख्श दो।
2: क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए।
0: नहीं, नहीं, नहीं,
3: ना ही आओ तो अच्छा है। हाँ, भगवान की भी यही इच्छा है,
0: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
3: तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर।
1: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
2: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।

0: जी सत श्री अकाल जी।
1: भाई भगवान दास, राम राम।
2: आइए आइए, आ गए आप। मगर ये क्या, साथ में इतनी भीड़ ले आए।
1: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो। चलो भाई,
2: ओके
1: कारवा
2: ओके
1: चला
2: ओके
1: है।
2: ओके, ऐसा करते हैं, वहां दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ, एक एक करके आना।
1: ठीक
2: है ठीक
1: है।
2: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
1: सरदार जी, आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
0: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी, अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने।
2: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
1: शर्त वर्त यहाँ पर?
2: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
1: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
2: जिसने पाप ना किया हो।
1: ओहो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
2: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
1: हम क्यों धोखा धोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
2: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
1: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
2: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
1: हम क्यों नजर डालेंगे, अब बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
2: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
1: अरे भाई, क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? या भीतर जाऊं दर्शन करने?
2: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
1: ठीक है, ये चला।
2: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
1: दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हाँ, हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
2: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
3: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर।

0: और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी। स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: In a fair and equitable manner.
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में

राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
1: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से

0: शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: भोजपुरी का लिखा बप्पी लहरी का सोरबत किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया, कौन लाया?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, exercise and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये वारिस फिल्म का गाना था। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस ज़माने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है कि उस ज़माने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूज़िक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सेटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूँगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूज़िक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, कि किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, अनपढ़, 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफ़ी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज़ से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

1975 जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूँ ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए, एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं

प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपको सुनवाते हैं, बोल राजा मेहदी अली खां के हैं, धुन मदन मोहन की और फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: आइए सुनते हैं
1: ये मौसम
0: आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म दिल्ली का ठग में। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार रवि।

और अब आइए आपको सुनवाते हैं सुहागन फिल्म का गीत। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत मदन मोहन का है और आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का गीत। आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने

पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री

0: मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The PM added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. PM Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive

सुबह की लाली माँ हमें याद दिलाती है उस जीवन की शक्ति को जो संघर्ष और पीड़ा के क्षणों में भी मौजूद रहती है। मृत्यु और जन्म, दुख और प्रसन्नता, निराशा और आशा के साथ सहज ही संवाद करती है। और हम संवाद कर रहे हैं आपके साथ, जी हाँ, आप ही के अपने चैनल, जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। स्वागत है आप सभी के साथ। सूरज के रथ को सुनहरी किरणें धीरे धीरे सुजज्जित करते हुए आज के नए दिन का आरंभ कर रही हैं, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। कार्यक्रम है भोर सुहानी, और भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ, आप ही के पास हूँ, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। तो आइए उस प्रभु का भी स्मरण कर लें आज सुबह की शुरुआत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल दिल्ली के एफएम पर। जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बहुत सुहानी लेकर आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो जनाब, जिंदगी का जो पर्चा है ना, जिंदगी की रंगीन किताब को रंगीन बनाने के लिए, रंगों से भरने के लिए, उजालों के साथ अदम में साहस ही नहीं, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी कारगर सिद्ध होते हैं। जब आप खुश होते हैं तब अपनी प्रकृति के साथ साथ अपनी प्रकृति का कण कण भी देखिए। जी हाँ, प्रकृति का कण कण भी आपकी खुशियों का हिस्सा बन जाता है। कैसे झिलमिल झिलमिल करते हुए तारे आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए

जब बाहरी ताकतें हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं ना, तब हमारी जिंदगी का संतुलन ही हमें संभालता है। जी हाँ, आपका कितना संतुलन है अपने जीवन पर? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गमगीन हो जाते हैं, दुख से भर जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है जनाब। हम भी तो, जब हमें दुख आता है तो हम भी तो कभी कभी गम में डूब जाते हैं। थोड़ा सा उदास तो हम हो ही जाते हैं। भाई इंसान है तो इंसान के अंदर जो भाव है ना, वो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी उदासी को इतना गमगीन नहीं कर देना चाहिए कि हम ये भी भूल जाएं कि हमारे जीवन के साथ साथ और भी लोग जुड़े हैं, हमारे कुछ अपने अपने खास, जो दिल के बहुत करीब हैं, जो हमें दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए जनाब, यही तो जीवन का फलसफा है। और फलसफा सब कुछ हमारे हाथ नहीं है, हम टिमटिमाते दिए की तरह जलें या फिर बुझ जाएं। पर बुझे क्यों जनाब, हम तो गम छोड़कर खुशियों को मनाएंगे और खूबसूरत से गीत गाएंगे।